0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला? इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर शो तो इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और आज के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते और इसी नमस्ते के साथ श्रोताओं आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी जानकारियां और गीत संगीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी दोस्त आरजे सुमन के साथ। श्रोतो, आज है संडे का दिन, कहते हैं संडे की सुबह है आराम का दिन, दोस्तों के संग मस्ती ही मस्ती और साथ में पूरे हफ्ते की थकान मिटाने का दिन। संडे है फंडे, ये सबका होता है प्रिय दिन। जी हाँ श्रोताओं, हर कोई चाहता है कि कब संडे आए और कब हम थोड़ा सा आराम करें, क्योंकि हमारी दिनचर्या, हमारा शेड्यूल इस तरह से व्यस्त रहता है कि हर कोई थोड़ा सा आराम चाहता है। वैसे भी 6 दिन कामकाज के होते हैं और 7वां दिन हमारे आराम का होता है। आराम में हम घूमने फिरने भी जाते हैं, घरेलू कामकाज भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, अच्छा खाना पीना भी खाते हैं और ढेर सारा इंजॉय करते हैं। यानी ये दिन अपने खुद के लिए होता है। जी हाँ श्रोताओं, हर दिन हम कुछ ना कुछ करते हैं, अपने काम काज पर जाते हैं, कार्य की जो भागदौड़ होती है हमारी ज़िंदगी में लगी रहती है, लेकिन खुद को जीने का दिन होता है संडे। और संडे होता है फंडे, इस दिन खूब मस्ती होती है, खूब धमाल होती है, खूब हम सोते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, क्योंकि हर दिन तो ये होता है कि अपने कामकाज पर जाना है, टाइम से उठना, टाइम से काम पर निकलना। लेकिन संडे के दिन बहुत सारा आराम करते हैं। इस समय की बात की जाए तो बहुत सारे श्रोता इस समय भी सोए होंगे, तो थोड़ा सा हम उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उठ जाओ, हम आपके पास अपनी आवाज़ के माध्यम से पहुँच चुके हैं, आपके फ़ोन पर और आपके सेट पर। तो जल्दी से ऑन कर लीजिए अपने रेडियो सेट और सुन लीजिए हमें, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत लेकर हम हाजिर हो चुके हैं रेडियो गुंजन के स्टूडियो में। तो थोड़ा सा साथ आपका भी चाहिए, साथ के बिना जिंदगी थोड़ी अधूरी सी लगती है, और साथ मिल जाए तो जिंदगी बहुत प्यारी और बहुत हसीन लगती है। तो ये संडे की जिंदगी को, संडे को थोड़ा सा खुशनुमा बनाते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी जानकारियां आपके साथ साझा करनी हमने शुरू की है। तो श्रोताओ, संडे का दिन है आज, और आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो सुकून की बात मत कर गाली, कहने वाले ने कहा है, बचपन वाला एतवार अब कहाँ रहा है। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे, और आज तो जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज़्यादा है कि कई बार बिना हंसे भी शाम हो जाया करती है। जी हाँ, श्रोताओ, इन्हीं खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं योगा दिवस की। आज हम सभी योगा दिवस मना रहे हैं, और जगह जगह आज कार्यशालाओं पर भी योगासन का क्लासें जो है चल रही हैं। और सबसे पहले श्रोताओ, हम जाने कि योग होता क्या है। योग जीवन को निरोग करने की एक बढ़िया सा काम है। योग सही तरीके से जीने का भी ज्ञान है, और साथ ही साथ दैनिक जीवन में इसे शामिल किया जाना चाहिए। ये हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ श्रोताओ एकता, और साथ ही साथ एक दूसरे को एक दूसरे से बांधना भी है, क्योंकि अकेले कोई भी काम नहीं किया जा सकता है, और योग मिलकर किया जाए, एक गुरु के सामने किया जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि जो जानकार होता है, जो गुरु होता है, वो सही तरीके से हमें योगासन करना भी सिखाता है। सही तरीके से किया गया योग ही हमारे शरीर को निरोग रखता है, और कई बार जो है गलत तरीके से किया गया जो योग होता है वो हमारे लिए, हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव भी डालता है। और साथ ही साथ योग हम सभी के लिए ज़रूरी होता है। योग में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जिन्हें हम अपनी दैनिक जीवन में अपना सकते हैं, और योग हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत सारी आजकल के इस तरह की हमारी जीवन शैली चली है कि हम आराम परस्त हो गए हैं। आराम परस्त होने की वजह से बहुत सारे रोग जो है शरीर में प्रवेश भी कर जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप निरोगी रहकर इस प्यारे से जीवन का आनंद लें, तो अपने जीवन में योग को ज़रूर शामिल करें। जब अपनाएंगे आप योग, तो रहेंगे हमेशा निरोग। तो श्रोताओ, आइए कार्यक्रम में हम योग की और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में थोड़ा सा लेते हैं एक विराम, और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: चलो इसी गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है समाचारों का।
1: हमारा स्वभाव बन जाता है साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष योग 365 पहल के अंतर्गत 100 दिन की ऑनलाइन योग कक्षाओं का आयोजन किया है। कई केंद्रीय और राज्य मंत्री ने इस अवसर पर योग कार्यक्रम में भाग लिया। इधर योग दिवस के उपलक्ष पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर के अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इधर सिरमौर में जिला स्तरीय कार्यक्रम नाहन के ऐतिहासिक पक्का तालाब परिसर में आयोजित हुआ। इस अवसर पर शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप, नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी समेत कई गणमान्य लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। आयुष विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ योग किया। मीडिया से बातचीत में सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को एक नई पहचान मिली है और आज कई देश भारत देश का अनुसरण कर योग की तरफ बढ़ रहे हैं।
3: देश ही नहीं पूरी दुनिया में 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग को लेकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर इस बात को रखा और उसी का नतीजा रहा कि आज दुनिया भर में आज के दिवस के ऊपर योग का अभ्यास किया जाता है।
2: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी।
2: इस बीच कांगड़ा जिला में स्थापित 12 परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारियों के साथ इस बार ITBP की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे और जैमर भी लगाए जाएंगे।
5: नीट का जो री एग्जाम होने वाला है जिला कांगड़ा में 12 सेंटर्स में होने वाला है, तो उनसे रिलेटेड जो हमारी तैयारी है उसकी पूरी एंड टू एंड प्रोसेस को हमने चेक कर लिया और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो भी हमने डिप्लॉय कर, एग्जाम सेंटर्स पे जैमर्स की हमने वहाँ पर इंस्टॉलेशन करवा दी है ताकि एग्जाम कंडक्ट कराने में किसी तरीके की कोताही किसी तकलीफ से ना आए।
2: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTS सेवा और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला के कसुमटी में बहुमंजिला पार्किंग सुविधा का कल लोकार्पण करने के अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पार्किंग सुविधा स्थानीय लोगों व पर्यटकों के लिए लाभकारी होगी। इस पार्किंग परिसर का निर्माण लगभग 28.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जिसमें 315 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला को अधिक व्यवस्थित और सुचारू शहर बनाने के लिए राज्य सरकार 246 करोड़ रुपए की लागत से भूमिगत यूटिलिटी डक्ट प्रणाली का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि शहर की सौंदर्यात्मक छवि को बढ़ाने के लिए शहर में केबलों को भूमिगत किया जा रहा है। इससे न केवल शहर का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा बल्कि शिमला की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। किन्नौर जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक गांव-गांव पहुंचकर किसानों को मिट्टी संरक्षण और वैज्ञानिक बागवानी की जानकारी दे रहे हैं। कृषि व बागवानी विभाग और आत्मा परियोजना के सहयोग से संचालित ये अभियान जिले की कृषि और बागवानी विरासत को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अभियान के तहत जून माह के अंत तक जिले के 30 से अधिक गांवों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
6: इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, बागानों की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों को टिकाऊ खेती के लिए प्रेरित करना है। केंद्र शार्बो द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत जिले के तीनों विकास खंडों कल्पा, पू और निचार में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने किसानों को बिना मिट्टी परीक्षण के रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बचने की सलाह दी है। साथ ही गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने का जोर दिया है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के तहत देश के विभिन्न राज्यों से आए युवा प्रतिभागियों ने स्पीति के सीमावर्ती गांवों का भ्रमण कर यहां की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय जीवन की जानकारी ली। इस दौरान युवाओं ने आईटीबीपी के साथ योग सत्र, शारीरिक प्रशिक्षण और आत्मरक्षा से जुड़े विशेष प्रशिक्षण में भाग लिया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
7: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत देश के विभिन्न राज्यों से आए युवा प्रतिभागियों ने स्पीति के सीमावर्ती गांवों का भ्रमण कर वहां की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय जीवन को करीब से जाना। इस दौरान युवाओं ने आईटीबीपी के साथ योग सत्र, शारीरिक प्रशिक्षण और आत्मरक्षा से जुड़े विशेष प्रशिक्षण में भाग लिया, जहां उन्हें अनुशासन और बुनियादी सुरक्षा तकनीकों की जानकारी दी गई। युवाओं ने राजकीय उच्च पाठशाला लालुंग में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के प्रति सेवा और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करना है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
2: किन्नौर जिला परिषद की महत्वपूर्ण सीट पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। कल्पा वार्ड से निर्वाचित हकीम नेगी को आम सहमति से जिला परिषद किन्नौर का अध्यक्ष और रिब्बा वार्ड से धनमाला नेगी को उपाध्यक्ष चुना गया। उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने दोनों नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर नव निर्वाचित अध्यक्ष हकीम नेगी ने कहा कि परिषद के माध्यम से जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी और जिले के समग्र विकास के लिए सभी सदस्यों को साथ लेकर कार्य किया जाएगा। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और नीट पुनर्परीक्षा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, कड़ी सुरक्षा में नीट पुनर्परीक्षा आज। दैनिक जागरण का शीर्षक है, हमीरपुर में आज योग करेंगे मुख्यमंत्री। पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, पीडब्ल्यूडी कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। दिव्य हिमाचल लिखता है, हिमाचल के 9 लाख किसानों को मिले 2,000 रुपए। अमर उजाला ने हाईकोर्ट के हवाले से एक अन्य सुर्खी दी है, पंचायत के प्रमाण पत्र भवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं। भूकंप के प्रति संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में बहुमंजिला भवन निर्माण पर सरकार को फटकार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समारोह का किया नेतृत्व। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध। और किन्नौर जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि बागवानी को दिया जा रहा प्रोत्साहन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

श्रोताओं, इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और रविवार की इस प्यारी सी सुबह में एक बार फिर से अपने श्रोताओं का यानी आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, एक रविवार ही है जो रिश्तों को संभालता है, बाकी दिन तो जिम्मेदारियों की कश्ती को संभालने में ही खर्च हो जाते हैं। जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल इसी तरह से होता है ना कि रविवार का दिन होता है, हम अपने रिश्तों के साथ जीते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, बातचीत करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं और दिन की दिनचर्या हमारी इतनी व्यस्त होती है कि कई बार तो अपनों से मिलने का, अपनों से बात करने का भी हमारे पास समय नहीं होता है। खैर श्रोताओं, कामकाज भी जीवन में बेहद ज़रूरी होते हैं, कामकाज के बिना तो हमारी गाड़ी भी नहीं चलती है। और इसी बातचीत के साथ फिर से हम योग के बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आज दिन है, हमारे जीवन को एक बढ़िया दिशा में ले जाने वाला दिन है। तो आइए, अगर नहीं योग करते हैं तो आज के दिन से प्रण करते हैं कि योग को अपने जीवन में ज़रूर अपनाना है। तो योग बहुत ज़रूरी होता है हम सभी के लिए। योग के नियमों की श्रोताओं थोड़ी सी बात करें तो योग जो है गुरु के निर्देश में ही आरंभ करना चाहिए, इसे सूर्योदय या सूर्य अस्त के वक्त ही करना चाहिए, ये सही समय रहता है। योग करने से पहले स्नान ज़रूर करें और साथ ही साथ योग खाली पेट करें, योग करने से 2 घंटे पहले कुछ ना खाएं पिए और आरामदायक सूती कपड़े पहने, क्योंकि जानकारी श्रोताओ बेहद ज़रूरी होती है, जानकारी के बिना जो है कोई भी काम अधूरा रह जाता है। और साथ ही साथ तन की तरह मन को भी स्वच्छ होना ज़रूरी है। योग करने से पहले बुरे ख्याल दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, अच्छे विचारों को अपने मन में रखें और फिर देखिए जीवन किस तरह आपका आगे बढ़ता है और शरीर किस तरह से आपका स्वस्थ रहता है। इसके साथ साथ किसी शांत वातावरण और साफ जगह में योग करें, अपना पूरा ध्यान योग अभ्यास पर केंद्रित कर दें और योग अभ्यास धैर्य और साथ ही साथ दृढ़ता से किया जाता है, शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा कहते हैं कोई भी काम सही तरीके से किया जाए तो उसका लाभ मिलता है और सही तरीके से ना किया जाए तो उसका जो है बुरा परिणाम हमारे सामने आता है। किसी भी योग को करते हुए अपने शरीर को झटका ना दे, अपने गुरु के द्वारा बड़े आराम से बड़े प्यार से योग अभ्यास करें और एक मन में खुशी रखें। जब मन पर खुशी होती है तो दिल जो है हमारा खुश ही रहता है और शरीर स्वस्थ हो तो चेहरा भी खिला खिला रहता है। और एक बात और श्रोताओं आपको बता दें कि योग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, हमें बीमारियों से तो योग दूर रखता है, साथ ही साथ हमारे चेहरे पर भी चमक लाता है और यही चमक तो हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के चेहरे पर बनी रहे। तो श्रोताओं, आपकी चमक को थोड़ा सा और दोगुना करते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला और जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: आजादी के अमृत महोत्सव पर, गुजरात की 75 बेहद खूबसूरत जगहों पर अडानी फाउंडेशन द्वारा देश हित में आयोजित किया गया है योग।
1: श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। जानकारियों से पहले एक खूबसूरत सी पंक्तियां आपकी नजर करते हैं। श्रोताओ, सुबह को सताना अच्छा लगता है, सोए हुओं को जगाना अच्छा लगता है, जब याद आती है किसी की तो उसे भी अपनी याद दिलाना अच्छा लगता है। जी हाँ श्रोताओ, उठ जाइए, जग जाइए, माना कि एतवार है लेकिन दिन बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, बहुत सारी जानकारियों से भरपूर है, योगा दिवस है, साथ ही साथ म्यूज़िक डे भी आज है, म्यूज़िक भी हम आपको साथ साथ में सुनवा रहे हैं, और फादर डे की भी बात हम करेंगे क्योंकि आज का पिटारा ढेर सारी जानकारियों से भरा हुआ है, धीरे धीरे हम उसे खोलते जाएंगे। तो थोड़ी सी बात योग की ओर कर लेते हैं। योग के बहुत सारे लाभ हमारे जीवन पर होते हैं, योग से शरीर में लचीलापन आता है, योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सहायक सामग्री को तैयार करता है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है, और 60 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोग भी आकर्षण उपकरण योग के लिए विशेष रूप से सहायक होते हैं। अब योग की श्रोताओं बात करें तो योग से तनाव भी कम होता है, नियमित योग अभ्यास तनाव को कम करने में मदद करता है, तनाव के स्तर को नियंत्रित करता है और अपने जीवन के समग्र गुणवत्ता में सुधार लाता है। योगाभ्यास से दीक्षा में सहायता हो सकती है। इसके साथ साथ 2023 की समीक्षा से ये निष्कर्ष निकला है कि योग अवसाद और चिंता को कम करता है, और थोड़ी सी बात हम करें, योग से हमारी ताकत भी बढ़ती है। ज़्यादातर लोग जो है योग को वास्तु शिल्प और वास्तु से जोड़ते भी हैं, लेकिन कुछ प्रकार के योग शक्ति निर्माण के सहायता में भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ श्रोताओं, योग से चिंता कम होती है। योग आसनों के बारे में हम कई नुस्खे जानते हैं, यह चिंता का विकल्पित उपचार के रूप में प्रभावशाली रहता है। अमेरिकन एंजाइटी एंड डिप्रेशन सोसाइटी की सलाह से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में चिंता विकार सबसे आम मानसिक स्वास्थ्य विकार हो गया है। योग जो है निद्रा, जो एक बॉडी स्कैन मेडिकल इंस्टीट्यूट माफ कीजिएगा इंडस्ट्री है के द्वारा भी हमारे सामने आया है, और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार इसमें लाया जा सकता है। जीवन की गुणवत्ता को कई प्रभावी कारक कर सकते हैं, जैसे कि लाभ, सीखने के अवसर, स्वास्थ्य और भौतिक सुख सुविधाएं इत्यादि। योग से नींद में सुधार किया जा सकता है। नींद हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी होती है, अगर नींद हमारी पूरी ना हो तो दिन भर हम सुस्ती महसूस करते हैं, और नींद पूरी हो जाए तो हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो श्रोताओं, बहुत सारी बातें अभी और भी आपके साथ करनी है, लेकिन थोड़ा सा कार्यक्रम में रुकते हैं और फिर से आप सभी तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम।

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में हम फिर से आगे बढ़ते हैं और जो है कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां एसडीए कॉम्प्लेक्स कुसुमटी में बहुमंजिला पार्किंग सुविधा का लोकार्पण किया है। इस पार्किंग परिसर का निर्माण 28.37 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जिसमें 315 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि ये पार्किंग सुविधा स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने इस पार्किंग सुविधा के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो

श्रोता कुमार शानू और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सुना आपने इस गीत को। तो इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से वापस कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्व संगीत दिवस के बारे में, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि आज वो ढेर सारी जानकारियां जो हैं हमारे पिटारे में है, उसे धीरे धीरे करके हम खोल रहे हैं। और विश्व संगीत दिवस की बात हम करें तो आज के दिन यानी 21 जून को इसे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य संगीत की विभिन्न शैलियों को बढ़ावा देना, कलाकारों को मंच प्रदान करना और आम लोगों को संगीत के प्रति जागरूक करना है। वैसे तो हमें पता है हमारे श्रोता संगीत के प्रति बेहद जागरूक है, उसे सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और खूब मस्ती भी करते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान बेहद ज़रूरी होता है। श्रोताओं, आज के दिन के इतिहास की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 21 जून 1982 को हुई थी। इसके संस्थापक, इसकी कल्पना फ्रांसीसी संस्कृत मंत्री जैक लैंग और संगीतकार मैरिस फेलेरेट ने की थी। और इसके साथ साथ इसकी तारीख डिसाइड करने का कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन रात छोटी होती है, इसलिए संगीत के शौकीन जो लोग होते हैं उन्हें संगीत का जश्न मनाने का समय जो है मिल जाता है। भारतीय संगीत की झलक की बात करें श्रोताओं, तो वेदों में संगीत जो है भरा हुआ है। भारतीय संस्कृति के अनुसार संगीत की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से मानी जाती है और साथ ही साथ सामवेद हिंदू धर्म में सामवेद को भारतीय संस्कृति का मुख्य जनक भी माना जाता है। इसके साथ साथ श्रोताओं, राग और सुर की बात करें तो भारतीय संस्कृति पद्धति सात स्वरों सारे गामा पाधा निशा पर आधारित है। इसे किस तरह से मनाया जाता है इसकी भी थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि श्रोताओं जब हमारे पास समय होता है और हम अपने श्रोताओं के साथ जुड़ते हैं तो मन करता है हर तरह की जानकारी उनके साथ साझा की जाए। तो श्रोताओं, इस दिन जगह जगह खुले मैदान, पार्कों और सड़कों पर विशेष संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संगीत तो हम हर समय सुनते हैं, रेडियो गुंजन के माध्यम से सारा दिन हम संगीत आप तक पहुंचाते रहते हैं और साथ ही साथ हम अपने घरों पर मोबाइल फ़ोन, रेडियो सेट और टीवी के माध्यम से भी संगीत का एंजॉय करते हैं। और पेशेवर शौकीन लोगों की बात करें तो इसमें केवल पेशेवर गायक ही नहीं बल्कि शौकिया संगीतकार और आम लोग भी भाग लेते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। खैर, जिन्हें गाना नहीं आता है वो भी संगीत को एंजॉय करते हैं और जिन्हें गाना आता है वो बेहद एंजॉय करते हैं। हर किसी के अपने अपने शौक होते हैं, किसी को गाना गाने का शौक होता है तो किसी का सुनने का होता है। तो श्रोताओं, सुनने का शौक अगर आप रखते हैं तो आइए आपको फिर से हम लिए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

चलो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर एस वाली ने आज धर्मशाला के कश्मीर हाउस में HPTDC की नई सदस्यता योजना के अंतर्गत पैलेटिनम गोल्डन एवं सिल्वर कार्ड और हिमाचल टूरिज्म विकास निगम की नई वेबसाइट https://hptdc-hp-gov.in का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, पर्यटकों के विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा हिमाचल को देश के प्रमुख पर्यटन गंतव्य और अधिक सशक्त बनाना है। इसके साथ साथ आर एस वाली ने बताया है कि इस कार्डों के माध्यम से पर्यटकों को HPTDC के होटलों, रेस्तरां तथा अन्य पर्यटन सेवाओं में विभिन्न

प्रकार की रियायतें और विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा है कि योजना नियमित पर्यटकों परिवार तथा कारपोरेट संस्थानों तथा पर्यटन प्रेमियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियाँ अभी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और कार्यक्रम में हम संगीत की बात कर रहे थे क्योंकि आज हम संगीत दिवस मना रहे हैं। तो श्रोता, संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि ये एक थेरेपी भी है और ये तनाव अवसाद को कम करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में बहुत मददगार साबित होती है। आप सभी ने श्रोताओं देखा होगा कि कई बार हम बहुत ज़्यादा खुश हों तब हम गीत संगीत का एंजॉय करते हैं, यानी नाचते झूमते भी हैं संगीत की धुनों पर, और कभी थोड़ा सा उदास हो तब भी हम संगीत सुनना पसंद करते हैं। हर तरह का संगीत जो है मौजूद है, अपनी अपनी पसंद के हिसाब से हम संगीत का एंजॉय करते हैं। संगीत जो है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक प्रभावी तरीका है। वर्ल्ड म्यूज़िक डे के अवसर पर बहुत सारी बातें और जानकारियां आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रोता, बूढ़े बच्चे या जवान, हर किसी के जीवन में म्यूज़िक, ये संगीत बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने और मानसिक शांति पाने का भी एक प्रभावी तरीका है। जब भी मन उदास या खुश होता है तो बैठ जाते हैं हम संगीत सुनने। यही वजह है कि आज के समय में म्यूज़िक को थेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये हम न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी इसे सुनकर बेहतर महसूस करते हैं। और श्रोताओं, कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियां हम आपके साथ अभी भी साझा करेंगे क्योंकि बहुत सारा समय अभी हमारे पास बाकी है, लेकिन संगीत कार्यक्रम में आज ना सुनाएं तो बात नहीं बनती है। वैसे तो हर दिन हम संगीत आप तक पहुंचाते ही रहते हैं, लेकिन आज है ख़ास दिन यानी संगीत का दिन, तो बिल्कुल देरी ना करते हुए संगीत आप तक पहुंचाते हैं और फिर से वापस आते हैं। बहुत सारी बातें और भी आपके साथ करनी है, तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

शाबाश। प्यारे से गीत के बाद फिर से हम कार्यक्रम में वापिस आ चुके हैं, तो अब थोड़ी सी बातचीत हम और आपके साथ कर लेते हैं। तो श्रोताओं, म्यूज़िक थेरेपी की थोड़ी सी बात करें तो म्यूज़िक थेरेपी मन को शांत करने का एक अच्छा जो है तरीका है। सॉफ्ट और सुकून देने वाला संगीत सुनने में दिमाग को आराम मिलता है और साथ ही साथ जो है मानसिक बेचैनी भी कम होती है। यही वजह है कि ध्यान और योग के दौरान संगीत का इस्तेमाल किया जाता है और संगीत हम सभी सुनते हैं, हम सभी को अच्छा लगता है और ये क्रिएटिविटी बढ़ाने वाला भी होता है। म्यूज़िक थेरेपी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करती है और साथ ही साथ कई लोगों के मन में संगीत सुनते समय नए विचार भी आते हैं, उन्हें काफ़ी एकाग्रता बेहतर हो जाती है और यही कारण है कि कलाकार, लेखक और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स काम करते समय संगीत सुनना पसंद करते हैं। अगर हम अपनी घरेलू महिलाओं की बात करें तो वो भी संगीत सुनना ज़्यादा पसंद करती हैं। कहा जाता है कि संगीत सुनते समय हमारे काम भी जल्दी जल्दी से होते हैं, एनर्जी बढ़ती है। श्रोताओं, म्यूजिकल थेरेपी आपको एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस कराने में मदद करती है और इसके साथ साथ जो है म्यूज़िक शरीर को काफ़ी सारी एनर्जी देता है, तेज और हमारे काम भी तेज़ी से होने लगते हैं और साथ ही साथ यही वजह है कि वर्कआउट, दौड़ने या किसी काम को करने पर लोग अक्सर संगीत सुनते हैं। आप सभी ने देखा होगा मॉर्निंग वॉक करते समय बहुत सारे लोगों ने हेडफोन अपने जो कहे कानों में लगाए होते हैं, जिससे कि वो गीत सुनते हैं और अपना काम करते रहते हैं। सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है, म्यूज़िक पूरे माहौल को खुशनुमा बनाए रखने में भी मदद करता है। इसके साथ साथ कई सारे लोग संगीत सुनते हैं और सकारात्मक ऊर्जा उन्हें मिलती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति खुद को एनर्जेटिक महसूस करवाता है। बहुत सारी बातें संगीत के द्वारा होती है। सही किसी ने कहा है कि इससे जो है एक थेरेपी का काम किया जा सकता है। ये तनाव को कम करता है। तनाव को हम कैसे भूल सकते हैं, आजकल हर किसी के जीवन में तनाव है, कोई भी तनाव से बच नहीं पाया है। श्रोताओं, तो आजकल की लाइफस्टाइल पूरी ही तनावपूर्ण हो गई है, ऐसे में म्यूज़िक थेरेपी तनाव और चिंता को कम करती है और साथ ही साथ जो है हमारे शरीर को भी तरोताज़ा महसूस करवाती है, मूड बेहतर करती है। संगीत का सीधा असर हमारी भावनाओं पर भी पड़ता है। जब हम पसंदीदा गीत सुनते हैं तो खुशी और उत्साह महसूस करते हैं और मन उदास या थका हो तो सॉफ्ट संगीत मूड को बेहतर करने में भी मदद करता है। तो थोड़ा सा श्रोताओ, हम भी आपका मूड बेहतर करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, अभी हमें नहीं जाना है, अभी हमें आपके साथ ढेर सारी जानकारियाँ जो साझी करनी है। तो इन्हीं जानकारियों में हम विश्व संगीत की बात कर रहे हैं, जिसे हम आज के दिन मना रहे हैं। ये दिन संगीत की विभिन्न खूबियों की वजह से मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य मनुष्य के जीवन में खुशियाँ लाना, संगीतज्ञ और संगीत प्रेमियों को एक मंच पर लाकर इसे बढ़ावा देना है, ताकि अधिक से अधिक लोग संगीत को अपने जीवन में उतार कर अच्छा, सुखी और खुशियों भरा जीवन जी सके। शास्त्रों की श्रोताओं बात करें तो संगीत को ईश्वर का दर्जा प्राप्त है। ये तन और मन दोनों को शांत करता है, मन में चल रहे द्वंद्व से हमें निजात दिलाता है, टेंशन तनाव को फुर से उड़ा देता है। ये भी योग की तरह ही हमारे शरीर में मन और मस्तिष्क को सीधी आत्मा तक शुद्ध करता है। मनुष्य जब जब ज़्यादा टेंशन महसूस करता है, उस समय कुछ देर तक म्यूजिक सुनता है और अपने आप को सकारात्मक महसूस करवाता है। श्रोता, ये दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तरह ही मनाया जाता है। योग भी बीमारियों को दूर करता है, तो संगीत भी हमारे जीवन को लंबा जीने के लिए सहायक होता है और साथ ही साथ बीमारियों से हम निजात पाते हैं, दवाइयों से छुटकारा पाते हैं।

हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है संगीत। जी हाँ, प्रतिदिन दिन में हमें कुछ समय संगीत को भी ज़रूर सुनना चाहिए। रोज़मर्रा की होने वाली बहुत सारी टेंशन परेशानियों से आराम मिलता है। कई दिनों से काम के बोझ हमारे दिमाग पर हो तो उससे भी संगीत की धुनों से एक उपचार का काम लिया जा सकता है। और हर रोग का संबंध किसी न किसी बीमारी से जुड़ा होता है, और बीमारियाँ जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है उन्हें दूर करने के लिए हम छोटे छोटे उपाय को अपना सकते हैं। योग को अपना सकते हैं, एक्सरसाइज को अपना सकते हैं, संगीत को सुन सकते हैं और अपने मूड को बेहतर कर सकते हैं। खैर, हम तो अपने श्रोताओं का मूड हर दिन अच्छा करने की कोशिश में, अच्छा करने की फिराक में लगे रहते हैं कि हमारे श्रोताओं का मूड हमेशा अच्छा रहे, हंसते मुस्कुराते हुए वो रहें और इस प्यारे से जीवन का लुत्फ उठाते रहें। तो आइए फिर से संगीत की धुनों में थोड़ा सा खो जाने की कोशिश करते हैं और खो जाते हैं पूरी तरह से और सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओं, समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर चल रहा है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं, हम संगीत की बात कर रहे थे क्योंकि वर्ल्ड म्यूजिक डे आज मनाया जा रहा है। तो संगीत में वो जादू है जो न केवल दिलों को जोड़ने का काम करता है बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है। ये एक ऐसी अनमोल धरोहर है जो सीमाओं, संस्कृतियों और समय को पार करके हर इंसान के भीतर की भावनाओं को उजागर करता है, चाहे वह रोगों की गहराई हो, लोक धुनों की सादगी हो या फिर हो आधुनिक बीट्स का जोश। संगीत हर रूप में जीवन को रंग, लय और भावनाओं से भर देता है। श्रोताओं, संगीत से जुड़ी बहुत सारी बातें जो है इस समय हमारे दिमाग में चल रही हैं और जब अपने श्रोताओं के साथ हम रूबरू होते हैं तो मन करता है ये भी बात कर ली जाए, वो भी बात कर ली जाए, कोई बात छूट ना जाए। जी हाँ श्रोताओं, विश्व संगीत दिवस को आज हम मना रहे हैं जिसे लेटे ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। लेटे ला म्यूजिक का अर्थ है संगीत उत्सव। ये दिन संगीत की विविधता, रचनात्मकता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। और साथ ही साथ श्रोताओं, कार्यक्रम में थोड़ा सा हम ले लेते हैं विराम क्योंकि संगीत की बात हो रही है और संगीत कार्यक्रम में ना हो तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। तो आइए आपके मज़े को थोड़ा सा दोगुना और बढ़ा देते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। तो आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला। फूलों से ढके कुछ सपने, अपनी आंखों में होंगे, घूंघट में छुपे कुछ सपने।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर शोधा इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम जो है इस वक्त आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओं कहते हैं ना, कहते हैं प्यार है ना, दिखाते हैं गम, जिम्मेदारियों के बोझ तले छुपे होते हैं वो पिता जो कभी अपना दर्द नहीं बताते हैं। जी हाँ श्रोता, बिल्कुल इसी तरह से होता है, जो पिता होते हैं वो अपना दर्द नहीं बताते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। आप मेरी बातों से समझ रहे होंगे कि भाई आज पिता की बात क्यों हो रही है, क्योंकि आज के दिन को हम फादर डे भी मना रहे हैं। हर साल जून के तीसरे रविवार को इसे मनाया जाता है और ये दिन पिताओं के प्यार, त्याग और परिवार के लिए उनके अमूल्य योगदान के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करने के लिए समर्पित होता है। श्रोताओं, पिता एक ऐसा होता है जो अपनी आंखों में कभी आंसू लाने नहीं देता है, अंदर ही अंदर उन्हें भी आंसू आते हैं लेकिन वो छुपा लेते हैं अपने आंसुओं को। श्रोताओं, फादर डे के इतिहास की हम थोड़ी सी बात करें तो फादर डे की शुरुआत सबसे पहले 5 जुलाई 1908 में हुई थी और अमेरिका के एक चर्च में एक आधिकारिक पर्व के रूप में स्थापित करने का श्रेय सोनारा स्मार्ट टोडे को जाता है। सोनारा के पिता की थोड़ी सी कहानी इसमें शामिल है, लेकिन थोड़ी सी हम फादर डे की और बात कर लेते हैं। ये दिन जो है पिता को समर्पित होता है और उनके साथ छोटा सा हम कुछ सरप्राइज़ भी प्लान कर सकते हैं अपने, जिनके जो माता पिता या फादर इस समय मौजूद है। बहुत सारे ऐसे भी श्रोता हैं जिनके पिता नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे भी श्रोता हैं जिनके पिता इस दुनिया में मौजूद है, तो उनके लिए कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उनकी इज्जत करनी है, सम्मान करना है और उनका कहना मानना है। ज़िंदगी का सफ़र बहुत छोटा होता है, जाने कब कौन किसे बिछड़ जाए ये भी पता नहीं होता है। तो जब तक ये हमारे सर पर माता पिता का हाथ है तो ज़रूर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं, उनकी सेवा करें। एक समय ऐसा होता है श्रोताओं की जब वो हमारी सेवा करते हैं और एक समय हमारा ऐसा आता है कि जब हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो दिल जान से आप उनकी सेवा करें और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं, क्योंकि माता पिता जो है बहुत बच्चों से प्यार करते हैं। बच्चे जो होते हैं माता पिता के लिए अनमोल तोहफे से कम नहीं होते हैं। और साथ ही साथ माँ की थोड़ी सी बात की जाए तो माँ खुद गीले में सोती है लेकिन अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है। माता पिता का योगदान हमारे जीवन में बहुत रहता है। पिता की बात आज हो रही है तो जो पिता होते हैं वो बहुत सारी मेहनत करते हैं, खूब सारा पसीना भी बहाते हैं, दिमागी दौड़ भी रहती है उनकी शामिल, तो इस दौड़ में भी अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर गुजरते हैं वो। लेकिन अपने दर्द को कहीं अपने सिर में छुपाए रखते हैं, किसी तक व्यक्त नहीं करते हैं। कहते हैं इंसान जीता ही अपनों के लिए है और अपने खुश रहते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है। जी हाँ, आज का दिन खास पिता के लिए समर्पित है, तो ये प्यारा सा गीत भी उन्हीं पर आपको सुनवा देते हैं। तो थोड़ा सा कीजिए इंतज़ार और आप तक पहुँचाते हैं हम कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

जी हाँ, श्रोता और पिता के योगदान हमारे जीवन में बहुत सारा रहता है। आज तक हमने जो है माता के बारे में ज़्यादा सुना था, लेकिन पिता की भी तारीफ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का योगदान हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रहता है। श्रोता हमारे अभिभावक होते हैं जो हमें जन्म देते हैं और साथ ही साथ हमारी परवरिश करते हैं, हमें पैरों पर स्टैंड करते हैं और बहुत खुश होते हैं। हमें बढ़ता देखकर भी वो खुश होते हैं। तो श्रोताओं, बहुत सारी बातें पिता के ऊपर दिमाग में चली हुई हैं। पिता जो होता है उसमें बहुत सारे गुण होते हैं। वह सदैव हर समय धीरे से काम लेते हैं और कभी खुद पर आपा नहीं होते हैं। हर परिस्थिति में वो शांति से सोच समझकर आगे बढ़ते हैं और गंभीर से गंभीर मामलों में भी धैर्य बनाए रखते हैं। संयम की श्रोताओं बात करें तो पिता में बहुत सारा संयम होता है। वह अपने आप में नियंत्रण कभी नहीं खोते हैं। पिता हमेशा संयमित व्यवहार कुशलता से हर काम को सफलतापूर्वक समाप्त कर लेते हैं। अनुशासन में हमेशा रहते हैं। जो पिता होते हैं हमेशा हमें अनुशासन में रहना सिखाते हैं। वे खुद भी अनुशासित रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अपनी पूरी दिनचर्या अनुशासित रखते हैं। सुबह समय पर उठकर दैनिक कार्य में से निवृत्त होकर ऑफिस जाते हैं और समय पर लौटते हैं। वो प्रतिदिन जो है अपने परिवार का ख्याल और ध्यान रखते हैं। सभी सदस्यों के बारे में घर आकर पूछताछ करते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। उन्हें एक भी बच्चा ना दिखे तो उनसे अपनी पत्नी से ज़रूर पूछते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं, घर पर शांति बनी हुई है? क्योंकि बच्चे जब घर पर होते हैं तो धूम धड़ाका मौज मस्ती शोर शराबा रहता है। गंभीरता की श्रोताओं बात करें तो पिताजी घर के सभी काम और परिवार के सभी लोग उनके स्वास्थ्य के प्रति भी गंभीर होते हैं। अगर पिता बच्चों की चिंता करता है तो बच्चे भी पिता की जरूर चिंता करते हैं और उनका ध्यान और ख्याल रखते हैं। श्रोताओं प्रेम की और थोड़ा सा रुख करें तो पिता बच्चों से प्रेम करते हैं तो बच्चे पिता से प्रेम करते हैं। घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देते हैं। बच्चों की हर जरूरत और फरमाइशों को पूरा करते हैं। किसी भी प्रकार की गलती होने पर वो हमें डांटने की बजाय हमेशा प्यार से समझाते हैं। अगर डांटते भी हैं तो उस डांट में भी पिता का प्यार छुपा होता है। दिल बहुत बड़ा होता है पिता का। श्रोताओं पिताजी का दिल जो है बड़ा होता है, तभी तो खुद भूखे रहकर कई बार हमारा पेट भी भरते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब वो हमारी ज़रूरतों को बहुत ही प्यार से पूरा करते हैं। अपनी ज़रूरतें भूलकर हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करने में जी जान लगा देते हैं। परिवार के सदस्यों को किसी भी चीज़ के लिए तरसने नहीं देते हैं। और बड़ी से बड़ी गलतियां क्यों ना हो जाए, हमेशा कुछ देर गुस्सा करने के बाद फिर से अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। तो हुई ना श्रोताओ कितनी सारी बातें पिता से जुड़ी हुई। तो दोनों का हमारे जीवन में बराबर महत्व है। पिता कभी अपनी तकलीफ़ को दूसरों परिवार के सदस्यों के साथ जाहिर नहीं होने देते हैं। बहुत ज़रा खुमार, बहुत ज़रा दर्द लिए ज़िंदगी के सफ़र में पिता भी आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए धरती पर ईश्वर का साक्षात रूप होते हैं हमारे माता पिता। तो संतान को सुख देने के लिए अपने सुखों को भी भुला देते हैं पिता। वे रात दिन अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और हर सुविधा देना चाहते हैं जो उन्हें भी कभी ना मिली हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं श्रोताओं करने के लिए, लेकिन बीच बीच में हमें ध्यान आ जाता है कि थोड़ा सा गीत संगीत की और भी रुक कर लेते हैं, क्योंकि भाई अपने श्रोताओं को हमें सुनवाने हैं प्यारे प्यारे गीत। तो ये फिर से देरी ना करते हुए आप तक पहुँचा

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हमारी वापसी हुई है और पिता की बातचीत अभी और हमें थोड़ी सी आपके साथ करनी है। तो पिता का महत्व हमारे जीवन में बहुत सारा होता है, जैसे एक बरगद का पेड़ खुद को तेज आंधी और बारिश से अपने बच्चों को, यानी अपने जो नीचे बैठे होते हैं राहगीरों को छांव देता है, उसी तरह से एक पिता अपने बच्चों को संभालता है और उनकी परवरिश करता है। एक पिता का साया सिर पर रहता है तो बच्चे दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद रहते हैं। और घर का राशन कहाँ से आना है, बिजली का बिल कैसे देना है, घर की समस्याओं को कैसे सॉल्व करना है, और भी ढेर सारी चुनौतियाँ जीवन में होती हैं। अगर पिता सर पर हो तो किसी बात की टेंशन किसी बच्चे को नहीं होती है और वह सुकून से सोते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पापा सब संभाल लेते हैं। लेकिन पिता का व्यक्तित्व तो हमारे जीवन में बहुत ही अहमियत लिए होता है। एक पिता का व्यक्तित्व श्रोता अक्सर नारियल की तरह होता है, ऊपर से सख्त और भीतर से नरम। बचपन में जब हम कोई गलती करते हैं तो पिता की डांट हमें बुरी लगती है, लेकिन उस डांट के पीछे हमें सही राह पर लाने का रास्ता छिपा होता है। और साथ ही साथ बचपन में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे हम ऐसे गलत काम कर देते हैं जिस पर डांट

लगती है, उस समय तो हमें बहुत सारी उनकी कही हुई बातें बुरी लगती हैं, लेकिन समय आने के बाद वही बातें हमें याद भी आती हैं और खुशी भी होती है कि हमारे पापा इस तरह से हमारे साथ कहा करते थे। तो श्रोताओं, पापा का हमारे जीवन में बहुत सारा योगदान होता है। माता पिता की ज़िंदगी चुनौतियों से कम नहीं होती है। पूरी ज़िंदगी किसी बच्चे की परवरिश करना भी आसान नहीं होता है। हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमें खाना खिलाना, हमारे कपड़ों का ध्यान रखना, हमारे स्कूली शिक्षा का ध्यान रखना और शादी विवाह करना, पैरों पर स्टैंड करना, बहुत सारी बातें होती हैं। और अगर इन बातों को पेरेंट्स किसी वजह से पूरा ना कर पाए तो ज़िंदगी भर उन्हें पछतावा रहता है। तो हर माता पिता की यही कोशिश रहती है कि अपने बैठे बैठे अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से वो मुक्त होना चाहते हैं और हर एक ज़रूरत को पूरा करते हैं। जी हाँ, माता पिता के योगदान हमारे जीवन में बहुत सारा होता है। कहा जाता है कि ये जिंदा भगवान हमारे जीवन में होते हैं, अगर इनकी सेवा कर ली तो हमें चार धाम की यात्रा करने की या तीर्थ पर जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो श्रोताओं, अपने माता पिता की जी जान से सेवा कीजिए, उनकी हर बात को मानिए और उन्हें ढेर सारा प्यार दे। इसी प्यार के साथ हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो विजन धर्मशाला और यूँ ही बने रहिए हमारे साथ।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है।

जी हाँ अंशु, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे अभिभावक, हमारे पापा हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन के सफ़र में आगे बढ़े, और उन्हें आगे बढ़ता देखकर बहुत ही खुश भी होते हैं। और खैर, बच्चों को भी खुशी मिलती है, उनसे ज़्यादा खुशी जो है हमारे पेरेंट्स को मिलती है। वो हमेशा से यही दुआ मांगते हैं ऊपर वाले से कि हमारे बच्चे जीवन के सफ़र में आगे बढ़े और हमारा सही मार्गदर्शन भी वो करते हैं। तो श्रोताओं, फिलहाल अपनी बातों को यहाँ पर देते हैं विराम, और अगला गीत आप तक

श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में हमने आपके साथ की ढेर सारी जानकारियां साझा। उम्मीद है आपको पसंद भी आई होंगी। अगली बार नई बातों, नई जानकारियों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गए हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ही है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

0: 91.2 FM पर आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।
1: अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। एक और एक नया हफ्ता और एक नए एपिसोड के साथ मैं यहां पर आ चुकी हूं। और आज का जो एपिसोड है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी बचपन की यादें जो हैं वो इस जमाने से जुड़ी हुई हैं। मैं बात कर रही हूं 90s के जमाने के बारे में। बॉलीवुड में 90s का वो वक्त था जब हिंदी सिनेमा को शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे बेहतरीन एक्टर्स मिले और ऑडियंस को उनका रोल मॉडल मिला। इन एक्टर्स की काफी सारी ऐसी फिल्में थी 90s में जिसके लिए वन टाइम वॉच वॉज नॉट एप्लीकेबल। हम आज भी अगर कोई पूछे तो 90s की ही फिल्मों को अपनी फेवरेट फिल्में बताते हैं। वो उतनी ही फ्रेश और एंटरटेनिंग है आज भी अगर आप देखेंगे तो। ऑल्सो 90s का डेकेड मेरे हिसाब से वॉज लाइक अ ट्रांजिशन पीरियड। चाहे वो म्यूजिक हो या फैशन, सभी कुछ में एक नयापन आया था। इनफैक्ट एक्टर्स खुद भी अपनी वर्सिटैलिटी प्रूव करने के लिए चैलेंजिंग मूवीज किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, आमिर 27 साल के थे जब उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में एक स्कूल बॉय का रोल किया था। तो जो जीता वही सिकंदर वॉज वन ऑफ द सुपर डुपर हिट्स ऑफ द 90s। फराह खान ने एक इंटरव्यू में रिवील भी किया था कि दीपक तिजोरी के रोल के लिए अक्षय कुमार ने भी ऑडिशन दिया था। बट इमेजिन एट दैट टाइम दीपक तिजोरी वॉज अ बिगर स्टार एंड अ बेटर एक्टर देन अक्षय कुमार, तो दीपक तिजोरी को ये रोल मिला था। बात कर रहे हैं हम इस फिल्म की, थोड़ी पुरानी यादें भी ताजा हो ही गई हैं, स्कूल कॉलेज के दिनों की याद आ गई है। तो चलिए सुनाते हैं जो जीता वही सिकंदर से आपको पहला गाना, पहला नशा, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s के जमाने के कुछ बेहतरीन गाने आज मैं आपको सुना रही हूं। आई होप आपको ये गाने पसंद आ रहे हों। 90s की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बट अप्रिशिएटेड फिल्म वाज लम्हे। ऑडियंस को ज्यादा खुश नहीं हुई थी इस मूवी से, क्योंकि इस फिल्म में जिस तरह का रिलेशनशिप दिखाया था, जो एज गैप दिखाया था, उस समय लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे इसके लिए। आज तक भी कहते हैं कि लम्हे वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। अगर आज की तारीख में ये फिल्म आती तो सुपर डुपर हिट हो जाती। वैसे कि आप जानते हैं कि यश चोपड़ा ओरिजिनली एक न्यू कमर को कास्ट करना चाहते थे फॉर द रोल ऑफ वीरेन, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक्टर को अनकंफर्टेबल फील हो ये रोल प्ले करते हुए। लेकिन ये रोल लिखा तो गया था विनोद खन्ना जी को दिमाग में रख के, पर ये जब फिल्म पूरी हुई, स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हुई, तब तक विनोद खन्ना जी कुड नो लॉन्गर लुक लाइक अ 20-year-old। थोड़ी सी उम्र उनके चेहरे पे दिखने लगी थी, तो उन्होंने विनोद जी को कह दिया कि वो ये फिल्म में नहीं है। इस बात से विनोद जी काफी अपसेट भी हुए थे। जैकी श्रॉफ ने भी इस रोल के लिए ट्राई किया था, उस समय दिल जले फिल्म कर रहे थे वो, और उस समय की उन्होंने अपनी तस्वीरें भेजी थी यश चोपड़ा जी को। यश चोपड़ा जी को वो अच्छे लगे थे, लेकिन फिर भी वो फील नहीं आ रही थी। और तब वो समय था जब मौके पर चौका मारा अनिल कपूर जी ने, लेकिन अनिल जी की मूछें जो थी ना, वो यश जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो फिर भी सोच रहे थे कि साइन करें कि नहीं करें। और उसी दौरान अनिल कपूर जी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण वो घर पर ही रहे थे एक महीने भर के लिए। अब कुछ शूट वूट कर नहीं रहे थे, तो उन्होंने सोचा चलो इसी बहाने मूछें शेव करा देते हैं। उन्होंने मूछें शेव कराई, तस्वीरें खींच के यश चोपड़ा जी को भेजी, और यश चोपड़ा जी को वो दिल से पसंद आ गए। एंड दैट इज हाउ अनिल कपूर जी इस फिल्म का हिस्सा बने। तो चलिए, लम्हे फिल्म के बारे में बात हो रही है, तो इसी फिल्म का गाना आपको सुनाते हैं। लता मंगेशकर जी और हरिहरन जी की आवाज में वन ऑफ माय फेवरेट्स, कभी मैं कहूँ। और यही वो समय था जब यश जी को शाहरुख खान का साथ मिला था। कैसे इन दोनों का ये पैर बना था, जो कि आज तक भी यशराज फिल्म्स के साथ शाहरुख खान का एक नाता सा है, बताऊंगी उसके बारे में आपको कुछ ही देर के बाद।

0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s के जमाने के कुछ बेहतरीन गाने आपको सुना रही हूं और हिंदी सिनेमा में उस जमाने की कुछ छुपी हुई कहानियां जो हैं वो आप तक लेकर के आ रही हूं। वैसे 90s की शुरुआत ही हुई थी जब हिंदी सिनेमा में शाहरुख खान की एंट्री हुई थी और इंडस्ट्री में आते ही वो छा से गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ही वॉज क्वाइट इन टू माइंड्स कि वो एक ऐसा रोल करें कि नहीं करें जहां पर उन्हें एक नेगेटिव रोल में दिखाया जाएगा। वो अंजाम हो चुका था तो फिर उसके बाद भी वो थोड़े से डरे हुए थे कि एक ऑब्सेसिव लवर का एक पागल सा किरदार उन्हें डर फिल्म में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये उनके लिए सही होगा कि नहीं होगा। सनी देओल उस समय सुपरस्टार थे, बहुत पॉपुलर थे। उन्हें तो यश चोपड़ा जी ने चॉइस दी थी कि तुम चूज करो कि तुम सुनील मल्होत्रा का रोल करना चाहते हो या राहुल मेहरा का। सनी पाजी ने सोचा कि भाई मैं तो हीरो हूं, मैं विलन का रोल कैसे कर सकता हूं, लोगों को मैं पसंद आना बंद हो जाऊंगा। तो उन्होंने सुनील मल्होत्रा का रोल चूज कर लिया और शाहरुख खान को मिला राहुल मेहरा का रोल। एंड ये हम जानते ही हैं कि ये रोल कितना बड़ा हिट हुआ। बाय द एंड ऑफ इट सभी लोगों ने, देखने वालों ने, जो विलन है, जो शाहरुख खान का रोल था, राहुल का रोल था, उसके साथ में सिंपथाइज किया। एंड रातों रात शाहरुख खान सुपर डुपर हिट स्टार बन गए थे। दो लोग थे जिन्होंने इस रोल को मना किया था और बाद में बड़ा पछताए थे। वो दो लोग थे अजय देवगन और आमिर खान। इन दोनों को ही राहुल मेहरा के रोल के लिए अप्रोच किया गया था और दोनों ने ही इस रोल के लिए मना कर दिया था। सोचिए कुछ छोटे छोटे डिसीजंस कितना बड़ा इम्पैक्ट बना सकते हैं हमारे करियर पे। तो चलिए डर फिल्म से ही आपको अगला गाना सुनाते हैं हम। उदित नारायण जी की आवाज में है ये गाना, जादू तेरी नजर। सुनिए जरा।
1: जादू

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s के जमाने की कुछ कहानियां आपको बता रही हूं, कुछ गाने भी उसी जमाने के आपको सुना रही हूं। उस जमाने के वैसे जो किस्से हैं वो बड़े ही रहस्यमयी टाइप के हैं, ऐसा लगता है कि छुपाए गए हैं काफी सारे ये किस्से, जिससे कि बुरी पब्लिसिटी ना मिले लोगों को। जैसे कि कौन से रोल किस एक्टर ने नकार दिए, मतलब ये तो कहानी जो है वो एंडलेस है, चलती चली जा सकती है। कुछ देर पहले मैं आपको बता रही थी कि डर फिल्म में शाहरुख खान का जो रोल था वो पहले अजय देवगन और आमिर खान दोनों को ऑफर किया गया था और दोनों ने ये रोल नहीं किया। उसी तरह क्या आपको पता है शाहरुख खान ने भी एक सुपर हिट रोल को मना किया था और वो रोल था विरासत फिल्म में अनिल कपूर जी का रोल। 1997 में प्रियदर्शन जी की मूवी आई थी विरासत। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तब सिनेमा हॉल खाली हुआ करते थे क्योंकि इस फिल्म के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था, ज्यादा इंटरेस्टिंग लग नहीं रही थी, मसाला फिल्म नहीं थी। लेकिन बाद में वर्ड ऑफ माउथ के साथ में जो पब्लिसिटी मिली है इस फिल्म को, तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी एंड ऑब्वियसली शाहरुख खान रियली रिग्रेटेड कि उन्हें ये रोल कर लेना चाहिए था। अमरीश पुरी जी का भी जो किरदार है वो पहले नसीरुद्दीन शाह जी निभाने वाले थे, लेकिन तबीयत में कुछ गड़बड़ी के चलते उन्होंने ये रोल छोड़ा और अमरीश पुरी जी को ये रोल मिला। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ किसी और को इस रोल में जो कि अमरीश पुरी जी ने रोल किया था। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोल। इनफैक्ट इसमें पूजा पत्रा भी थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी लगी थी, लेकिन जो आवाज थी इस फिल्म में वो पूजा पत्रा की खुद की नहीं थी। पद्मिनी कोल्हापुरी जी ने पूजा पत्रा के लिए इस फिल्म में डब किया था। तो इतनी बात हो ही रही है तो सुनाते हैं आपको गाना इसी फिल्म से। सुनिए विरासत फिल्म का अगला गाना कुमार सानू और जसपिंदर नरूला जी की आवाज में। हर लड़की ने एक ना एक बार अपने आप को इस गाने में इमेजिन किया है। तारे हैं बाराती, सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s के जमाने की बातें चल रही हैं यहाँ पर, और उसी जमाने के ऐसे गाने आपको सुना रही हूँ जो आज तक भी हमको जुबानी याद हैं। हर एक एक शब्द, सारे लिरिक्स हमें रटे हुए हैं। तो आई होप आपको आज की ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही है तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिख करके बताइए, सो दैट मैं इसी तरह के और भी कुछ एपिसोड्स आपके लिए लेकर के आ सकती हूँ। 90s के जमाने में एक्ट्रेसेस भी बहुत सारी आईं, रानी मुखर्जी, काजोल, दिव्या भारती, जूही चावला, सभी लोगों ने अपने आप को प्रूव किया इसी समय में। ऐश्वर्या राय ने भी इसी समय में, इसी दौरान अपने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन से वो कभी भी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी, ना वो बॉलीवुड बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। वो तो मेडिकल साइंस परस्यू करना चाहती थी और जूलॉजिस्ट बनना चाहती थी। उसके बाद में एक जमाना ऐसा भी था जब उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने का सोचा था, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई उन्हें खुद ब खुद मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे उनके खूबसूरती को देख के, एंड दैट्स हाउ वो मॉडलिंग में चली गई। वैसे एक रोल था जो उन्होंने डिक्लाइन किया था और वो अभी भी रिग्रेट करती हैं कि वो रोल अगर इन्होंने किया होता, ऐश्वर्या राय ने किया होता, तो शायद एक अलग ही पहचान उनकी बनती बॉलीवुड में 90s के जमाने में। और वो रोल था टीना का रोल, यानी रानी मुखर्जी का रोल, फिल्म कुछ कुछ होता है में। पहले ये रोल ट्विंकल खन्ना को दिया गया था, उन्होंने मना किया तो ये रोल ऐश्वर्या राय के पास गया था, उन्होंने भी मना किया तो ये रोल रानी मुखर्जी के पास गया था। वैसे यू वोंट बिलीव, 2003 की मुन्ना भाई MBBS, संजय दत्त की जिंदगी की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म, इसमें जो ग्रेसी सिंह का किरदार था वो भी पहले ऐश्वर्या राय ही।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते, और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला? इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल। मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम इंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हां श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

दोस्तों, मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ शो दा सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुँचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला, इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

92.2 MHz पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक। तां श्रोताओं कर दे ने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने। तुहां सारे ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी।

मैं तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तेने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दिन माटी दी मैं है एक आशोताओं बढ़ते न कार्यक्रम जग गए तेने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहां सारियां ट्यून कीते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक। श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैंने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक। तो श्रोताओं बढ़ते ना कार्यक्रम च अगे कने सुनते निक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि करने ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम चल गए कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक अपनी रेडियो तो शशि कन्नै तो शो तो बढ़ दे न कार्यक्रम च अग्गे कने सुन दे न एक और प्यारा दिया गीत।

मैं तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तेने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी मैं है एक आशोताओं बढ़ते न कार्यक्रम जग गए तेने सुन देन एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 MHz पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैंने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक। तो श्रोताओं बढ़ते ने कार्यक्रम च अगे कने सुनते निक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि करने ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम चगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला? इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

0: सिंह।
1: दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने,

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 MHz से अपने मन पसंद

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते, और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला? इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर थे रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा और श्रोताओं हम तो सुगी तुम अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर। क्या हालचाल न तुंदे और क्या हालचाल न तुंदे ग्रां रे, उम्मीद करना तो है भी ठीक और ग्रां भी बिल्कुल ठीक बुना। श्रोताओं कार्यक्रम लेकर हाजिर पहुंचेगा इंदी अपनी गप्पा तक कार्यक्रम में श्रोतों आज गलबात करने असु कमल नैरिया रे बारे और यारे गीत असु इस कार्यक्रम में हुनने तैयार। श्रोतों कार्यक्रम रा आगाज कर देने कमल नैरिया रे इस गीता होगी बड़ा खूबसूरत गीता लोबिया। कमल नैरिया इस गीता अंदर बल्लून देन श्रोतों चनने लगी हो सारी रात वो लोबिया गेरी फेरी पलंगा लाए हो हथे दिया घड़िया मत खोल दो बैरी लोके टाइम दिता ओ वैरिया ता टाइम हिंदा भी बचगो कार्यक्रम रा आगाज करने रहा इस गीता होगे आइया इस कार्यक्रम रा आगाज कर देन शो।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और एक कार्यक्रम इस समय चल रहा हिंदी अपनी गप्पा। एक कार्यक्रम सचिन कपूर सो की तो है बिल्कुल हुनु कर देने समय अपने अपने रेडियो सेट में शो तो आइया कार्यक्रम जो हगो बढ़न देन और अगला गीत हुन देन कमल नहरी रा लाडलिए। तो केवल लुंदन कमल नहरी है इस गीत अंदर लाडलिए गीत अंदर आइए शो तो हुन देन है सब भी कि लगन दी फराटी और केवल देन इंदे अपने कमल नहरी जी हुन देन ये गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इस वक्त। हाँ जी बिल्कुल, हिंदी अपनी गप्पा चल रही ना। कार्यक्रम होने कर दिन सचिन कपूर सो के बिल्कुल और लाइव और श्रोताओं कार्यक्रम अंदर आज कमल नहरी रे गीत यह सब होने कर दिन अगले गीत रही और बढ़ देन और अगला गीत है श्रोताओं सही जाया नंदराल हुआ। तो बल दिन कमल नहरी जी इस गीता सही जाया नंदराल हुआ वो तो जो बांस रहने देंदे हो तो जने बांस लेंदे सराने अंदर श्रोताओं तो निंदर तापू बड़ी छैल पेंदे है ना। कई कमल नहरी जी कि बांस रहने सो हूं दिन है सब भी।

क्यानो दिशम लव 2 मेगाहर्ट्ज पर थी वीडियो गुंजना और बड़े प्यारे प्यारे गीत के ने सुकमल नेरी जी है इन दी कम्युनिटी ओ दितुरे शतो और हर बार कोशिश कर देन कि अपनी कम्युनिटी होगे लगाव रखन जुड़ाव रखन और इस तरीके रे और प्यारे प्यारे गीत के ने सो अपनी गद्दी कम्युनिटी जो दीन। बहरहाल कार्यक्रम सचिन कपूर सो के हुनो कर देन तो है और चलिए शतो अब अगला गीत हुन देन। मेरा बड़ा पसंदीदा गीत है डिस्को मेरे गद्दिया, बड़ा प्यारा गीत है शतो कमल नेहरी री आवाज में गीता सु जरूर हुनना। कमल नेहरी बलुंदे ने इस गीता की डिस्को मेरे गद्दिया दणके सुधारा छड़ीता है ना, मेरे मेरे बिजली भी लगिया अंबर भी गरजो और क्या क्या बलुंदे ने कमल नेहरी जी कड़ी कड़ी क्या क्या गरजो सो हुन लेन देन शतो है सब तो है। बनी रहा 91.2 मेगाहर्ट्ज पुठी वेडियो गुंजन धर्मशाला सोगी गूंज अपने बन रहे।

बड़ा मजा इच्छुंदा आनंदित छुंदा इस कार्यक्रम होने रहा क्योंकि गीत चल रहे हैं आज कमल नहरी है दर्शकों तो सब सचिन कपूर तो की बन रहे ना और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा इस वक्त चल रहा तुम दे सब भी वे वीडियो सेट मा तुम दे सब भी ऐप मा तैयार कार्यक्रम जो और हगू बढ़न देन और अगला गीत कमल नहरी जी रहा होने देना संसारो बिल्लू पैसे थिए ओ संसारो पैसे थिए मिये दोस्ते लोरे थे सो दिन कैसे थिए तो जने दोस्ते लगे गंदे श्रोता हूँ तो सो दिन कैसे बुंदा है सो सब भी पता है ना दोस्ते और दिल लगे ये चीज ही अनोखिया ये लगेगा अच्छा ता भी बेड़ा पा रहा ना लगा ता भी बेड़ा पा रहा तो और क्या बोलूं देने कमल नहरिया जी कि बीणीपुर नचे वो संसारो बीणीपुर नचे तैया कमल नहरिया जी नचाऊं देने असु सब भी श्रोता भी इन नचू कर देने आइए श्रोता हूँ आगे फराटी और लाई लेंदेने इस गीता बुठे।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो गुंजन धर्मशाला और हाँ तुम अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर श्रोताओं कार्यक्रम जो आगे बढ़ंदन और अगला गीत होंदन टिक टिक टोकेरा रिवाजो सनी आ रहा टोके दा रिवाज बड़ा आया हो नरी साहब टोके रे रिवाज बाकी आ और नरी साहब सबनी वे टोके दे तुहे भी घड़ी दिंदन ते मुंजो छोरू पति आंदा हो ता चिट्टी चादर बछाने थल्ले हो ढकना के लाना हो तो ढकने की जरूरत नहीं नहरी साहब कार्यक्रम में माहौल ही तूना गर्मो गर्म आके ढकने की क्या जरूरत पैनी आइए श्रोताओं आका फराटी और सही नहरी साहब अरे इस गाने पुट्ठी

91.2 MHz पुटिए वीडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोतों कार्यक्रम इस वक्त चल रहा हिंदी अपनी गप्पा आनंदित छुगर्दन बुना तो सुसभ्य भी कार्यक्रम होने रहा क्योंकि कार्यक्रम में शो तो मजा इतना ज्यादा है छुगर्दन क्योंकि बंडरा भी तो है सचिन कपूर सो की ना ता और नरी सब बेहतरीन बेहतरीन गीत है सब हुनु करदन शो तो नरी सब शूटिंग रे दौरान किया सो काफी हद तक करखा न करखा दिक्कत भी इंदी ने सो भी सामना करना पेंदी ने यूट्यूब में कह रहे गीत असू खरे तो लगते ने बड्डी पिक्चर अंदर असू गीत खरे लगते ने नचते खरे लगते ने लेकिन इंदी पिट्ठी पुछू और इंजो तू ना स्ट्रगल करना पैंता शो तो जाए सो डांसर बून चाहे सो सिंगर बोआ चाहे सो कैमरामैन बोआ चाहे सो मॉडल बोआ चाहे जो मर्जी बोआ है ना जितना भी यारी फैमिली यारा परिवार बंदा सब भी हो गया सो काफी दिक्कत आ रहा सामना कदी कदी के आसो करना पैंदा और कदी कदी तो इजिली निकल जाता कि शूटिंग है यार दोते शूट कर लेंगे है ना लेकिन कणके कणके बंदा शो तो उन्नी की बच गए है ना तो ये शो तो कार्यक्रम में होंगे ना वह अगला गीत सृष्टि री रचना हेरे वो देवी है हेरे वो मंगला दुए वो जमे दुए गोदा पाना पर त्रिया वो कलंक करा पाना वो त्रिया कलंक करा पाना आइया हुंदे ने ए प्यारा दिया गीत

शोधो मजे चलिया इस गीता हुनेरा बड़ा आनंद आ हुना तुसु सभी होवे बुचिगो टाइम बुचिगो समय क्या करिए दिल न बंदा तुसु छड़नेरा पर शोधो मुंजो भी घरो गाना पैना ना

लन्नो तुस सभी हूँ इजाजत श्रोता हूँ बस गंदे गंदे बोलना चाहनू हाँ हंसते रहे मुस्कुराते रहे और माँ बाप की इज्जत करते रहे अपने भारत जो अपनी पंचायत जो अपने डिस्ट्रिक्ट जो अपने धर्मशाला जो साफ सुथरा रखने की कोशिश जरूर करा। जय हिंद जय धर्मशाला।

0: Audio Jungle.
1: खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। लेबनान पर इसराइल के बड़े हमले, होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद। उच्च शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में अभी भी हो रही तंबाकू उत्पादों की बिक्री। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान आपस में बैठकर निकालेंगे BBMB मुद्दे का समाधान। हिमाचल के लिए मंजूर 5 केंद्रीय विद्यालय नॉन फंक्शनल। सेब, लाल चावल, चर्मा व हिमाचली उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार। अब समाचार विस्तार से।

ईरान ने फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। ईरान की ज्वाइंट मिलिट्री कमांड ने सरकारी टीवी पर ऐलान करते हुए कहा कि इसकी वजह लेबनान में हो रहे इसराइल हमले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून की रात शांति समझौते पर दस्तखत हुए थे। इसमें हॉर्मुज को खोलने और लेबनान में हमले बंद करने की शर्तें थी। ट्रंप की पहल पर 19 जून की रात इसराइल और लेबनान के बीच सीजफायर का ऐलान हुआ था। हालांकि सीजफायर के ऐलान के 8 घंटे बाद ही इसराइल और लेबनान के बीच संघर्ष शुरू हो गया। उच्च शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में अभी भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री हो रही है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय की ओर से गठित उड़नदस्तों की जांच के दौरान कई शिक्षण संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाई गई है। साथ ही जांच के दौरान सामने आया है कि कई संस्थानों में अधिनियम के तहत अनिवार्य चेतावनी बोर्ड भी प्रदर्शित नहीं किए गए हैं। इसको लेकर उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लिया है और निर्देशक उच्चतर शिक्षा डॉ. हरीश कुमार ने निर्देश जारी किए हैं कि उच्च शिक्षण संस्थान मुख्य द्वार, प्रवेश एवं निकास द्वारों सहित प्रमुख स्थानों पर निर्धारित चेतावनी बोर्ड तत्काल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी और पंजाब, हरियाणा व राजस्थान को पानी उपलब्ध करवाने जैसी समस्या का समाधान निकट भविष्य में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में निकलेगा। शिमला के होटल पीटर हॉफ में आयोजित 2 दिवसीय 22वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद स्थायी समिति बैठक में इस विषय को लेकर बात आगे बढ़ी है। इसी तरह प्राकृतिक आपदा व बाढ़ के हालात से निपटने के लिए रणनीति बनेगी। केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2024 और अक्टूबर 2025 में स्वीकृत किए गए हिमाचल के 5 नए केंद्रीय विद्यालय पूरी तरह से नॉन फंक्शनल हैं। इनमें रिडी कोठेड़ा, थुनाग, गोकुल नगर, अपर वंझाल व नंदपुर और पांटा साहिब जिला सिरमौर का केंद्रीय विद्यालय शामिल है। केंद्रीय शिक्षा विभाग के अनुसार किसी भी नए केंद्रीय विद्यालय को शुरू करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को निःशुल्क उपयुक्त भूमि, किराया मुक्त स्थायी भवन और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवानी होती हैं। इन 5 विद्यालयों के मामले में ये शर्तें पूरी नहीं होने के कारण अभी तक शैक्षणिक गतिविधियां शुरू नहीं हो सकी हैं। हिमाचल प्रदेश के सेब, लाल चावल, चरमा, बांस और अन्य विशिष्ट हिमाचली उत्पादों को वैश्विक बाजार मिलेगा। इस दिशा में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ के 3 करार किए हैं। हिमाचल प्रदेश के किसानों, बागवानों और सहकारी संस्थाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में हिमफेड ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार की राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के साथ 3 महत्वपूर्ण सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने JVT शिक्षकों की भर्ती में BEd डिग्री धारकों को योग्य घोषित करने की मांग खारिज कर दी है। सैकड़ों अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि पोस्ट कोड 721 के तहत भर्ती और पदोन्नति नियमों के प्रावधान के अनुसार कोई भी याचिकाकर्ता JVT पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है। सभी याचिकाकर्ता BEd डिग्री धारक होने के आधार पर खुद को JVT शिक्षकों के पद पर भर्ती के लिए योग्य समझ रहे थे। प्रार्थियों ने मांग की थी कि प्रतिवादी आयोग का निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं यानी BEd डिग्री धारकों को JVT पद के लिए योग्य समझें और मेरिट के आधार पर परिणाम तैयार करें। उनकी ये भी मांग थी कि उन पर अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने की शर्त न लगाई जाए। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS वाली ने शनिवार को नई सदस्यता योजना के तहत प्लेटिनम, गोल्डन एवं सिल्वर कार्ड और प्रदेश टूरिज्म विकास निगम की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उनका कहना है कि कार्ड पर पर्यटकों को SPTDC होटलों, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटन सेवाओं में विभिन्न प्रकार की रियायतें और विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्लेटिनम कार्ड के लिए 99,000, गोल्डन कार्ड के लिए 75,000 रुपए और सिल्वर कार्ड के लिए 50,000 रुपए का शुल्क अदा करना होगा।
सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री, वितरण व आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, इन दवाओं के इस्तेमाल को कोई चिकित्सकीय आधार नहीं है। इनसे जुड़े संभावित जोखिमों के मद्देनजर इनका लगातार इस्तेमाल लाभकारी नहीं माना गया है। FDC दवाएं वे होती हैं जिनमें दो या अधिक सक्रिय औषधीय तत्व निश्चित अनुपात में शामिल होते हैं। हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को अब चेहरे के मिलान से ही छात्रवृत्ति मिलेगी। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया में ये बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए अब अपने चेहरे के डिजिटल पहचान के माध्यम से सत्यापन कराना होगा। इसी के साथ आज का ये खास बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने

0: दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 MHz से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।
1: जब तक तेरी आँच में बूंद बूंद न जलना लूं, जब

दोस्तों जब भी मन चाहे आपका सुकून तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: जिंदगी में करते रहते हो

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। शाम के 6 बज गए हैं और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय शुरू हो गया है। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हुई हूँ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। सबसे पहले सभी श्रोताओं को, जितने भी श्रोता कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे श्रोताओं। और देखिए, दिन हमारा निकल गया और शाम जो है वो आ गई है, और इस शाम को और अच्छा बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। तो श्रोताओं, दिन भर हम अपने काम करते हैं और शाम के समय थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए हमारे पास समय मिलता है, और आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें होने वाली हैं, क्योंकि श्रोताओं आप सभी जानते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा रहा। बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत सारे आज जो दिवस थे हमने मनाए हैं, और जिसमें कि आप सभी जानते हैं योगा डे आपने मनाया, इंटरनेशनल योगा डे, और म्यूज़िक डे भी आज के दिन मनाया जाता है जिसे आप लोगों ने मनाया, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा दिन फादर्स डे आज हम सभी ने मनाया और मना भी रहे हैं। तो इन पर थोड़ी थोड़ी चर्चा, थोड़ी थोड़ी बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे रोज़ाना की तरह बहुत ही प्यारी लाइनों के साथ। हर शाम हमें याद दिलाती है कि दिन चाहे जैसा भी बीता हो, कल एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल श्रोताओं, इसी सोच के साथ हमें हमेशा जीना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला अब शुरू हो गया है, और जिसका समय रहता है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का। तो आज 2 घंटों में हम आपके साथ करेंगे बातचीत और आप तक पहुँचाएँगे जानकारियाँ, और साथ ही आपका मनोरंजन करेंगे प्यारे प्यारे गीतों के साथ। श्रोताओं, बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, तो जो तो कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं उनका स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में, और जो श्रोता अभी तक नहीं जुड़े हैं उन्हें हम आवाज़ देते हैं कि कहाँ हो, जल्दी से चले आइए और ट्यून कीजिए 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला की शुरुआत हमने कर दी है बातों के साथ, और अब देर है तो किस बात की, एक प्यारे से गीत की। तो चलिए छेड़ते हैं एक प्यारी सी सरगम, प्यारी सी धुन, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ जिसे हम लेकर आए हैं मस्ताना फिल्म से, और आवाज़ें गीत में रहेंगी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

91.2 MHz पर श्रोता आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला की शुरुआत हमने की इस प्यारे से गीत के साथ, और हमने गीतों का ये सिलसिला इस गीत के साथ छेड़ दिया है और अब ये 8 बजे तक रुकेगा नहीं। बिल्कुल श्रोताओं, कार्यक्रम में आपको गीत संगीत के साथ जोड़े रखेंगे और आपके साथ बातें भी करेंगे। श्रोताओं, अभी तक तो आप हमारी सिर्फ आवाज़ सुनते थे, लेकिन अब हमने जब से लाइव भी अपने आप को लाना शुरू कर दिया है तो हमें लगता है कि हमें आप लोग पहचानने लगे होंगे, और अच्छा लगता है जब हमारे बहुत सारे श्रोता हमें मिलते हैं और इस बारे में बात करते हैं, उनकी फ़ीडबैक हमें मिलती है। और आपकी फ़ीडबैक श्रोताओं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं उसमें क्या कमी है वो आप बताएंगे, क्या कमी रह गई है, कौन सी चीज़ हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं वो आप ही हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है, ये रेडियो गुंजन धर्मशाला आपका है और आपके जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज मुझे रेडियो गुंजन धर्मशाला सुनने वाले एक ऐसे श्रोता मिले। हुआ यूँ कि आज मुझे कहीं जाना था और जहाँ मुझे जाना था वो रास्ता मुझे पता नहीं था, तो मैं जहाँ जा रही थी वहाँ एक स्कूटी खड़ी थी और एक मैडम स्कूटी पर बैठे थे, मतलब अभी स्टार्ट करनी थी, तो मैंने उनसे रास्ता पूछा और उन्होंने मुझे देख के बस यही कहा कि मैंने अभी आपको देखा है। मैंने कहा आपने मुझे कहाँ देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैंने फेसबुक पर लाइव देखा। तो मैंने उनसे कहा फेसबुक पर लाइव मैं बहुत कम आती हूँ, तब उन्होंने कहा नहीं, रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से आपको मैंने रेडियो पर लाइव देखा था और एकदम से आप मेरे सामने आ गए। तो अच्छा लगता है जब ऐसा लोग कहते हैं और हमें पहचानते हैं। खैर, उनका मैंने बहुत धन्यवाद किया और उनसे भी पूछा कि आपको ये चीज़ कैसी लग रही है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगता है, पहले हम रेडियो सुनते ही थे लेकिन अब हम आपको लाइव में देखते भी हैं। तो श्रोताओं, आपका प्यार इसी तरह से हमें मिलता रहे ऐसी हम कामना करते हैं। तो श्रोताओं, आज पूरे देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। तो आप भी बताइए आज आपने क्या किया। आज ज़रूर आप लोगों ने भी सांसों का जो कहते हैं ना एक लय होती है, एक प्राणायाम होता है, वो आपने किया होगा, बहुत सारी एक्सरसाइज आपने की होगी और कहीं ना कहीं आपको थकावट भी लगी होगी, क्योंकि जो पहली बार ये सब चीज़ें करते हैं उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लगता है श्रोताओं। लेकिन जिन्होंने भी पहली बार, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ एक दिवस जो होते हैं वो उसी दिन पर मनाए जाते हैं, कुछ लोग हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो योग दिवस है तो सिर्फ और सिर्फ योग दिवस पर ही योग करते हैं या प्राणायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्हें वो बोरियत लगती है। लेकिन जब आप एक दो दिन लगातार ये चीज़ें करते हैं तो आपको हल्कापन महसूस होता है और आपको लगता है कि नहीं, हमें इसके फ़ायदे मिल रहे हैं और हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए। तो श्रोताओं, आज इंटरनेशनल योगा डे आप लोगों ने मनाया, उसका आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे, आप लोग स्वस्थ रहें ऐसी हम कामना करते हैं, और योग के साथ हमेशा जुड़े रहिए श्रोताओं। योग के साथ भी जुड़े रहिए और रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ भी जुड़े रहिए, क्योंकि रेडियो गुंजन धर्मशाला सुबह से लेकर सारी रात, मतलब कि 24 घंटे आपके साथ रहता है और आपका मनोरंजन भी करवाता है, साथ ही आप तक पहुंचाता है बहुत सारी जानकारियां। और अब बातों को यहां पर थोड़ा सा रोकते हैं और आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर, जिसे हम लेकर आए हैं शोर फिल्म से। और श्रोताओं, इस गीत में आप सुनेंगे आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। तो श्रोताओं, इस गीत को सुनते सुनते मुझे एक बात याद आई, जो लाइन थी मौजों की रवानी है, वो इसलिए कहा गया है मेरे हिसाब से कि जो एक दरिया में जो एक मौज आती है, एक जो लहर आती है, वो आकर फिर वापस जाती है। और कहीं ना कहीं इस गीत में हमारी ज़िंदगी के साथ इसे जोड़ा गया है कि ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव इसी तरह से लहरों की तरह आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब हमारे हम पर परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, तो हम बैठ जाते हैं अफसोस मनाने, दुख मनाने, और ये नहीं सोचते कि ये जो समय आया है वो भी तो आया ही है ना, अगर वो आया है तो वो जाएगा भी। बिल्कुल श्रोताओं, ये जो बातें हैं ये सिर्फ बातें नहीं हैं, सोचो तो बहुत कुछ है और ना सोचो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, सीखना भी चाहिए। अच्छा समय आता है तो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, और बुरा समय आता है तो दुख भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि समय जो है वो ऐसी गाड़ी पर दौड़ता है जिसमें ब्रेक नहीं है, वो बिल्कुल भी कहीं भी नहीं रुकता है, चलता ही जाता है। तो जो समय आया है वो जाएगा भी ज़रूर। तो श्रोताओं, इस गीत को आपने सुना, और ज़रूर ऐसे गीत हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं, अगर हम समझने की कोशिश करें तो। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में श्रोताओं, आपका मनोरंजन हम करवाते हैं गीतों के साथ, और साथ ही हमारी ये कोशिश रहती है कि जानकारियाँ जो हैं वो भी आप तक पहुँचाई जाएँ। तो श्रोता, देर नहीं करते हैं और चलते हैं जानकारियों की ओर, और आप तक पहुंचाते हैं जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला हमीरपुर के अणु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। आयुष विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और बच्चों सहित लगभग 2000 लोगों के साथ करीब 45 मिनट तक योगाभ्यास किया। उन्होंने दीप प्रज्वलन और धन्वंतरि पूजन के साथ योगाभ्यास सत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने IDBI यानी इंटरनेशनल डे फॉर योगा से संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस पुस्तिका में योगासनों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियों का संक्षेप संकलन किया गया है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने, और ऐसी ही जानकारियां और भी श्रोताओं हमारे पास हैं जो आप तक पहुंचानी हैं, जिसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और अब रुकते हैं, फिर से चलते हैं, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आप सुनने जा रहे हैं कर्तव्य फिल्म का ये प्यारा सा गीत। आवाज़ें रहेंगी कुमार शानू और अलका याग्निक की।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। और श्रोताओं, आज संडे का दिन था और संडे का दिन वैसे तो बोलते हैं ना कि फंडे होता है और हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है वो दिन की शुरुआत करते हैं और दिन की बोलते हैं ना समाप्ति भी हम अपने अनुसार ही करते हैं। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे विश्व दिवस थे जो कि हमने मनाए, और साथ ही आपको बता दें आज री नीट एग्ज़ाम भी था। बच्चों को जिन्हें दोबारा से नीट का एग्ज़ाम देना पड़ा, आज उनका एग्ज़ाम भी था। और शाम को जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रही थी तो बहुत सारा ट्रैफिक भी था। वो ट्रैफिक इसलिए था क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम जो थे वो 5:15 बजे तक का टाइम था उसे एग्ज़ाम को ख़त्म होने का। उसके बाद बहुत सारे अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर घर की ओर वापस आ जा रहे थे, तो उस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक है अभी। और साथ ही श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे बच्चे थे, युवा थे, जिनका ये आज एग्ज़ाम था, उनका एग्ज़ाम अच्छे से गया होगा। कहते हैं ना कि जो बच्चा एग्ज़ाम के लिए मेहनत करता है, और जब ऐसा कुछ हो जाता है तो जिनके तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे पहले गया था, पहले एग्ज़ाम, उनके लिए तो दुख भरी बात थी। लेकिन कुछ बच्चों का ये भी मानना था कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो हमें एक चांस और मिला है। लेकिन खैर, जो भी था, उम्मीद करते हैं कि उनका एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा, और हम भविष्य में भी यही कामना करेंगे कि बच्चों के ऐसे एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएं और उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में देखिए अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस हम फिर से लौटेंगे कार्यक्रम में। तो आप सब भी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, बहुत सारा मनोरंजन बाकी है, जानकारियां भी बाकी हैं, तो आपने रेडियो सेट को छोड़कर कहीं दूर नहीं जाना है। जुड़े रहना है रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे की। योगा डे जो कि हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है, हमारी सेहत को ठीक रखता है, और साथ ही श्रोताओं आज हमने म्यूज़िक डे भी मनाया। म्यूज़िक डे तो वैसे हम रोज़ ही मनाते हैं, जो संगीत प्रेमी हैं वो संगीत के साथ जुड़े रहते हैं सारा दिन, उन्हें जब भी कोई काम करना होता है तो संगीत के साथ वो करते हैं। और श्रोताओं, हम कई बार कह चुके हैं कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो संगीत के साथ जुड़ा कीजिए, बहुत सारा जानकारी भी उससे मिलती है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बहुत सारे गीत ऐसे होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और गीत जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारा साथ देते हैं, ख़ास करके जब हम अकेले होते हैं, हमारे साथ बात करने वाला कोई नहीं होता, उस समय ये गीत हमारे बहुत अच्छे साथी बनते हैं। तो श्रोताओं, संगीत जो है वो एक ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, ये सीधे दिल से जुड़ता है और हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सबसे सुंदर माध्यम बन जाता है। श्रोताओं, हमें गीत गाना आता हो या ना आता हो, लेकिन जब कहीं गीत बजता है तो हम उसके साथ गुनगुना लेते हैं, चाहे हम जैसे भी गुनगुनाएं लेकिन गुनगुना लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिल के, हमारे मन के तार जो हैं उस गीत के साथ जुड़ जाते हैं। तो श्रोताओं, खुशी का माहौल हो और संगीत हो तो वो खुशी हमारी दोगुनी हो जाती है, इसलिए हमें संगीत के साथ जुड़े रहना चाहिए। संगीत जो है श्रोताओं वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि मन को शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता भी प्रदान करता है। कई सारे शोध बताते हैं कि मधुर संगीत तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। बिल्कुल, और इसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं आपको गीत सुनाने के लिए। तो बिल्कुल आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा ही एक खूबसूरत सा गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को आप सभी अपने रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, संगीत फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाज़ों में 91.2 MHz पर। श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, गीत संगीत के साथ साथ जानकारियां जो हैं वो भी चलती रहनी चाहिए, तो जानकारियों की ओर फिर से रुख करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं जानकारी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के अनुसित साई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के परीक्षार्थियों एवं युवा खिलाड़ियों तथा अन्य बच्चों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। इस क्रम में नादौन में लगभग 125 करोड़ रुपए का अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसे इसी वर्ष प्रदेश के खिलाड़ियों को समर्पित कर दिया जाएगा। इसमें तैराकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और टेनिस सहित 14 खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही श्रोताओं, राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह एवं योगाभ्यास सत्र में भाग लेने के बाद खिलाड़ियों के साथ संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इंटरनेशनल प्रतियोगिता के पदक विजेताओं के लिए करोड़ों रुपए के पुरस्कार राशि का प्रावधान भी किया है। एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं के लिए 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक के नगद पुरस्कार रखे गए हैं। इसी प्रकार श्रोताओं, ओलंपिक और अन्य इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भी सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी करोड़ों रुपए के इनाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 3.5 वर्ष पहले प्रदेश सरकार ने कार्यभार संभालते ही खिलाड़ियों की टाइट मनी में कई गुना वृद्धि की थी। इन खिलाड़ियों के लिए हवाई यात्रा और रेलवे AC क्लास में यात्रा का प्रावधान भी किया गया है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। और साथ ही श्रोताओं, देखिए जब ऐसी जानकारी हम तक पहुंचती हैं और ख़ास करके आज भी इंटरनेशनल योगा डे सभी ने मनाया, तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो धर्मशाला का सिंथेटिक ट्रैक है, अगर आप में से लोग कहीं जाते भी होंगे वहाँ वॉक करने, मतलब थोड़ा सा रनिंग करने के लिए, तो सुबह के 4:30-5 बजे के बाद अगर आप वहाँ जाएंगे तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो अपने छोटे बच्चों को भी अपने साथ लेकर आते हैं। 4 से 5 साल के बच्चे भी वहाँ आप देख सकते हैं और पेरेंट्स जो है वो अवेयर हो रहे हैं बच्चों के प्रति, क्योंकि आजकल के बच्चों में और पुराने समय के बच्चों में बहुत फ़र्क है। श्रोताओं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, पुराने समय के हों या इस समय के, लेकिन समय में जो है बदलाव आया है वो बहुत बड़ा बदलाव आया है। आजकल के बच्चों के पास घर में रहकर मोबाइल और TV एक ऐसा साधन बन चुके हैं जिसके साथ बच्चों को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो चुका है। खैर, पुराने समय में ये चीज़ें नहीं होती थी, इसलिए बच्चे जो थे वो खेतों की तरफ या ग्राउंड की तरफ भाग जाते थे और वहाँ जाकर काफ़ी सारी मेहनत करते थे, खेलते थे, कूदते थे, लेकिन आजकल के बच्चों को घर से या कमरे से बाहर निकालना भी बहुत मुश्किल है। और जो पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं उन्हें खुद अपने साथ लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा रनिंग करवा रहे हैं, वॉक करवा रहे हैं, योग करवा रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। श्रोताओं, हमें ही पहल करनी पड़ेगी, अगर हम बच्चों को कहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, बच्चों के साथ हमें भी निकलना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। एक बार बच्चे में अगर हैबिट आ जाए इस चीज़ की तो बच्चा खुद समझता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। फिर वही बात आ गई कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब बातों को यहीं पर रोकते हैं और चलते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर। छिछोरे फिल्म का गीत अब आप सभी के रेडियो सेट पर हम पहुंचा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आज का ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ।

बनाना चाहिए रोज़ हमारे, हमें अपने माता पिता से बैठ कर बातचीत करनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, और उन्हें हम जितना दे सकें वो बहुत कम है। श्रोताओं, पिता वे मजबूत छाया होती है जो अपने परिवार की खुशियों के लिए हर संघर्ष को मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते हैं। वे अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन बदले में केवल सम्मान और प्यार की उम्मीद रखते हैं। श्रोताओं, पेरेंट्स, चाहे वो माता है चाहे वो पिता है, उनके लिए उनके बच्चे सबसे बड़ी दौलत होती है। और जब कहीं कुछ भी करने की बात आ जाए, अगर छोटा सा खर्चा ही करने की बात आ जाए, और हम एज अ पेरेंट्स हम अपने ऊपर खर्च करते हैं तो हम सोचते हैं कि बिना मतलब का ही पैसा वेस्ट कर रहे हैं, छोड़ो, रहने दो, बचा लेते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से कुछ भी डिमांड करता है या बोलता है, तब हमें वो चीज़, वो फीलिंग नहीं आती। फिर हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे ने कहा है तो खर्च कर देते हैं। तो यही फ़र्क होता है माँ बाप के सोच में, माँ बाप के प्यार में, और हम बच्चे क्या कर सकते हैं उनके उस बलिदान के लिए, उनके उस प्रेम के लिए कुछ भी नहीं कर पाते श्रोताओं। पर हम यही कहेंगे कि हम उनका, कहते ना, एहसान कह लीजिए, उनका प्यार कह लीजिए, उनका जो भी हमारे लिए है उसके लिए हम उनकी कीमत नहीं चुका सकते। लेकिन हाँ, हम सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें प्रेम तो दे ही सकते हैं, अपनापन दे सकते हैं, खुशियाँ दे सकते हैं, दो मीठे बोल उन्हें दे सकते हैं, और सम्मान उनका कर सकते हैं। अगर हम इतना भी करते हैं श्रोताओं, तो बड़ी, बहुत बड़ी बात है। और आजकल के समय में हम देखते हैं कि बच्चों का माता पिता के प्रति प्रेम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होता चला गया है, और बड़े होने के बाद की बात नहीं, अब तो छोटे बच्चों का ही देख लीजिए, वो अपने में इतना बिज़ी रहते हैं कि माता पिता के साथ बात करने का या उनके साथ बैठने का समय उनके पास नहीं है, है ना। और पुराने समय में देख लीजिए, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, मोबाइल फ़ोन, टीवी, तो हम लोग क्या करते थे, सोने से पहले भी अपनी माँ के पास या अपने पापा के पास जाते थे और कहते थे हमें कहानी सुनाइए या कोई कविता सुनाइए या हमें कोई गीत ही सुना दीजिए, है ना, और हमें अपने साथ सुला लीजिए। लेकिन अब वो दिन नहीं रहे हैं। घर में अगर चार सदस्य हैं तो चार ही कमरे हैं। हर कोई अपने अपना बेड अकेला चाहता है, अपना कमरा बंद रख के अपने मोबाइल के साथ समय बिताना चाहता है। लेकिन श्रोताओं, ये माँ बाप आज हैं, कल ना भी हों, जब तक हैं उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ समय बिताइए। यही एक छोटा सा संदेश कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देना चाहेंगे। तो सभी माता पिता को प्यार और सम्मान ज़रूर मिलना चाहिए। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब हम फिर से चलेंगे श्रोताओं एक प्यारे से गीत की और। दीवाना फिल्म का ये गीत अब आप सुनेंगे अपने रेडियो सेट पर कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ों में।

0: कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में श्रोताओं, अब इस समय हो रहा है समाचारों का, तो चलते हैं सुनते हैं समाचार।
1: स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है, यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघजी कर रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दोनागिरी संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। नीट यूजी की पुनः परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। ऑकलैंड में फाइनल में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। उधर दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और श्रोताओं, समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। जितने भी श्रोता हमारे साथ 6 बजे से जुड़े हैं या फिर थोड़ी देर के बाद यानी कि अभी जुड़े हैं, उन सभी को एक बार फिर से सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आपका अपना कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का समय आपको एक बार फिर से बता दें, शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय रहता है इस कार्यक्रम का। श्रोता जो हमारे नियमित श्रोता हैं उन्हें तो टाइम का पता होता है, लेकिन बहुत सारे श्रोता हमारे ऐसे भी हैं जो हमारे साथ बिल्कुल नए नए जुड़े होते हैं, उन्हें कार्यक्रम का पता नहीं होता। इसलिए श्रोता आपको बता दे रहे हैं कि अगर अभी आपने रेडियो सेट ऑन किया है तो आप सभी को बता दें कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं। और श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब फिर से हम जा रहे हैं शुरुआत करने एक प्यारे से गीत के साथ। तो चलिए सुनते हैं मिलकर इस प्यारे से गीत को जिसे हम लेकर आए हैं ये जवानी है दीवानी फिल्म से, और आवाज़ रहेगी अरिजीत सिंह की।

श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं इस समय, और श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। इस गीत के बाद श्रोताओं फिर से हम कार्यक्रम में बढ़ेंगे आगे और आप तक पहुंचाएंगे जानकारी। हिमाचल पर्यटन क्षेत्र में एक अहम हस्ताक्षर रखता है। हिमाचल को हर मौसम में पर्यटकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सशक्त कदम उठाए हैं। पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की सरकार की नीतियों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश की हसीन वादियों, देसी और विदेशी पर्यटकों से सदैव गुलजार रहती है। प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र के विविध आयामों को नया स्वरूप प्रदान कर रही है। धार्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हिमाचल को साहसिक पर्यटन के केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश के जलाशयों को लग्जरी और एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस कड़ी में गोविंद सागर झील में पहली बार क्रूज, शिकारा, हाउस बोट, जेट स्की और वाटर स्कूटर जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। श्रोताओं, प्रदेश सरकार ने बिलासपुर के हरनोड़ा से तत्तापानी तक 30 किलोमीटर तक लंबा क्रूज मार्ग विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्य में वैश्विक स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिससे साहसिक पर्यटन को नए पंख लग रहे हैं। और साथ ही हमीरपुर जिला के नादौन में ब्यास नदी पर एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप तथा शिमला जिला की सतलुज नदी पर एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन आकर्षण का केंद्र रहते हैं। कांगड़ा जिला का बीड बिलिंग दुनिया भर के पैराग्लाइडरों के लिए स्वर्ग के समान है। राज्य की अन्य जगहों में भी पैराग्लाइडिंग संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। इस क्रम में शिमला जिला के जुनगा में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप सभी तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने, और इस जानकारी के बाद अब फिर से हम आगे बढ़ेंगे एक प्यारे से गीत के साथ। श्रोताओं चलते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को मिलजुल कर। आप भी सुनिए और हम भी सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओं, सातवां आसमां इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे श्रोताओं, और आप सभी इस समय ज़रूर अपना काम जो है वो भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ संगीत के साथ भी जुड़े होंगे। और फिर वही बात कि संगीत जो है वो किसी मेडिसिन से कम नहीं है, किसी इलाज से कम नहीं है। श्रोताओं, बहुत सारे गीत जो ऐसे होते हैं जो हमारी पसंद के हों तो हम वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, और हमारी पसंद के ना हों तो हम वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो श्रोताओं, ऐसे ही संगीत पर बात हो रही थी कहीं पर, तो उनसे ये पूछा गया कि आपको संगीत किस तरह का पसंद है। तो कहते कि जो पुराने गीत होते हैं ना, वो उस समय के गीत जो हैं वो अब बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आजकल के जो गीत हैं वो इतना अच्छे तो नहीं होते, लेकिन हम सुन लेते हैं, है ना। तो हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, अपने अपने उम्र के हिसाब से हर किसी की अपनी पसंद होती है, और हमें सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो सभी को पसंद आए गीत, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। तो श्रोताओं, शाम का ये समय है, और शाम के इस समय में हमारे बहुत सारे काम जो हम लोगों ने दिन भर किए होते हैं उसके बारे में हम घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर डिस्कस करते हैं कि आज सारा दिन हमने क्या किया, कैसा रहा, कौन से काम थे जो नहीं हुए, कौन से काम थे जो हो गए। खैर, आज तो संडे था तो ऐसा तो कोई काम होगा नहीं जो आप लोगों ने कहीं बाहर जाके ऑफिस में जाके करवाना होगा। अपने जो भी छोटे मोटे काम हैं वो आज सभी लोगों ने किए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपके सभी काम बने भी होंगे। और अगर नहीं बने हैं श्रोताओं, तो भी आप उम्मीद मत छोड़िए। कहते हैं कि उम्मीद अगर आपने छोड़ दी तो समझ लीजिए कि वो काम अब नहीं होगा, और अगर आप उम्मीद को पकड़े रखेंगे तो उम्मीद कहीं ना कहीं आपको ठिकाने पर पहुँचा देगी, यानी कि मंजिल पर पहुँचा देगी। तो सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं, जब हमें कहीं पर भी चोट लग जाती है तो हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान उस चोट पर चला जाता है, और हमें कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ वो चोट दिखती है, क्योंकि वो दर्द जो है वो हमें फील होता है। तो ऐसे में एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे अपने ही जैसे बच्चे होते हैं, कई बार जो छोटा बेटा था तो बेटा कहता था कि मम्मा अगर कहीं चोट लग जाए ना तो आप ये सोचा करो कि मतलब ये ना एक पत्थर है, हमारी चोट जो एक पत्थर है उसे उठाओ और उसे साइड में रख दो, तो आप फील करोगे कि आपको दर्द नहीं हो रहा है। तो श्रोताओं, ये तब की बात है जब मेरा बेटा 10 या 11 साल का था और उसे चोट लगी थी, तो उसे ये डर था कि डांट पड़ेगी, लेकिन जब पूछा गया कि दर्द तो नहीं हो रही, तो कह रहे मैं फील ही नहीं करता हूँ। तो कहीं ना कहीं बच्चे हमें बहुत बड़ी एक शिक्षा दे जाते हैं और सीख दे जाते हैं, और वो बात आज तक मेरे दिमाग में है, और जब भी कभी कोई ऐसी चोट या कोई ऐसी दर्द फील होती है तो मुझे वो बात याद आती है कि अपने दिमाग में ये सोचो कि वो आपकी दर्द जो है वो आप उठा रहे हो, और उठाकर आपने उस अपनी बॉडी पार्ट में जहाँ भी आपको दर्द है उसको निकाल कर आपने साइड में रख दिया है, और सच में आप ऐसा फील करेंगे कि वो दर्द आपको महसूस ही नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं वो बात मुझे सच में अच्छी लगी थी, और होना भी ऐसा चाहिए। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा ध्यान से सोचते हैं, उसी के ऊपर फोकस कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात या वो दर्द हमें छेड़ता है, हमें तंग करता है। तो अपनी सोच में हमेशा एक जो पॉजिटिव सोच है वो रखनी चाहिए, और ऐसे छोटे मोटे घाव, ऐसे छोटे मोटे दर्द जो ज़िंदगी में हमें कई बार मिल जाते हैं, कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो दिखते हैं, कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन अंदर ही अंदर हमें कहीं ना कहीं तकलीफ़ देते हैं। और ऐसी दर्द, ऐसी तकलीफ़ अगर आप लोगों की लाइफ में भी है तो मैं भी आपसे यही कहूँगी कि उसे निकाल कर फेंक दीजिए, और देखिए फिर आप कितना हल्का महसूस करेंगे, आपको वो सुकून मिलेगा। जब तक आप उस चीज़ को बाहर नहीं निकालेंगे वो आपको तंग करती ही रहेगी। इसलिए ऐसी कोई भी सोच, ऐसी कोई भी आपके दिल दिमाग में कोई बात है तो उसे अभी के अभी निकाल कर फेंक दीजिए, देखिए फिर आपको कैसा लगता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में बातों के साथ साथ गीत संगीत जो है वो हमारा चलता रहता है, और फिर से हम आपको लिए चलेंगे एक और प्यारे से गीत की और चलते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को जिसे हम लेकर आए हैं दहक फिल्म से, हरिहरन और साधना सरगम की आवाज़ों में।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, आप कार्यक्रम में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आजकल आप लोग न्यूज़पेपर देख लीजिए, सोशल मीडिया खोल लीजिए, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो लगातार आ रही हैं और उन्हें सुनकर और पढ़कर कहीं ना कहीं हम सोच में पड़ जाते हैं कि आजकल क्या हो रहा है। हर किसी के, कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं और कुछ लोग जो होते हैं उस प्रॉब्लम से लड़ लेते हैं, लड़कर आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो उस प्रॉब्लम के आगे माथा टेक देते हैं, यानी कि हार मान लेते हैं और ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे कि ना तो उसका कोई हल मिल पाता है बल्कि अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो श्रोताओं, आजकल ऐसी खबरें सुनकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बात करना बहुत ज़रूरी है। अपने घरों में भी बात कीजिए, कहीं भी बैठकर इस बारे में ज़रूर बात कीजिए कि किसी की भी लाइफ में अगर कोई ऐसी बात है तो किसी अपने के साथ ज़रूर साझा करो और बात करनी चाहिए। बात करेंगे तो उसका हल निकलेगा, लेकिन हम उस बात को लेकर अपने अंदर कूदते रहेंगे और लास्ट में जाकर हम ऐसा डिसीज़न ले लेंगे कि अब हमारा इस ज़िंदगी को ख़त्म कर देना ही अच्छा है। तो हम तो ये सोचते हैं कि अगर ऐसा करने से हर चीज़ का हल हो जाए तब तो क्या बात है, लेकिन देखिए ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल से एक ही बार मिलती है और जितने ज़िंदगी के जितने दिन जितने साल हमें भगवान ने दिए हैं उसे हमें जी लेना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमारी में बिस्तर पर पड़े रहते हैं, इलाज के लिए तरसते हैं, पैसों के लिए तरसते हैं, वो भगवान के आगे अरदास करते हैं कि मेरी ज़िंदगी ठीक से निभे, मेरी बीमारी से मुझे निजात मिल जाए, और ज़िंदगी की कदर करते हैं। लेकिन जिनकी लाइफ अच्छी है लेकिन छोटी सी कोई एक ऐसी बात हो जाए तो उस पर हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर उतारू हो जाते हैं, तो ये तो भाई गलत बात है। और यूँ कह लीजिए कि शायद उनमें हिम्मत नहीं होती उस चीज़ से लड़ने की। लड़ना सीखिए श्रोताओं, और आज के समय में ही नहीं पहले से ही ये जो परेशानियां हैं, ये जो दुख हैं, हर किसी की लाइफ में आते रहे हैं, लेकिन हर किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया है। उनसे सीख लीजिए जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे दिन देखे हैं, ऐसे बुरे दिन देखे हैं, बुरा समय देखा है, लेकिन फिर भी वो उससे निकल कर आए हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में मैंने एक कहानी भी सुनाई थी जिससे हमें सीख मिली थी कि जिस इंसान को एक सिलेंडर नुमा मशीन में रहकर अपनी ज़िंदगी जो थी उन्हें सर्वाइव की थी और बहुत बड़ी किताब भी लिख डाली थी और नौकरी भी की थी, जबकि हमारे पास तो सही सलामत शरीर पड़ा है, और हम छोटी सी बात के लिए इस ज़िंदगी को ख़त्म करने पर जब सोचते हैं, ये सोच जो है हमें बदलनी चाहिए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कूड़े से रहते हैं, अकेले रहते हैं, चुप रहते हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि कौन सी ऐसी बात है जिससे वो परेशान है, क्यों चुप है, क्या है। तो कहीं ना कहीं अगर हम उन्हें समझाने में या उनके उस परेशानी से उन्हें निकालने में सहायक हो सकते हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। तो श्रोताओं, ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसे जी लीजिए बिल्कुल, और ज़िंदगी की कदर कीजिए। चलते हैं कार्यक्रम में ऐसा ही एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं डियर ज़िंदगी, इस फिल्म का गीत जसलीन रॉयल की आवाज़ में।

बिल्कुल श्रोताओं, लव यू जिंदगी, अपनी ज़िंदगी की कीमत को पहचानिए और ज़िंदगी की कदर कीजिए। ये ज़िंदगी मिली है, इसे जी लीजिए और कोई भी परेशानी हो तो उसे निकाल फेंकिए या किसी अपने के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत श्रोताओं, और गीत संगीत के साथ आपको जोड़े रखते हैं हम लोग कार्यक्रम के माध्यम से, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आप लोग सुनते रहते हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला पर, जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको मिलती हैं और आपका मनोरंजन भी होता रहता है। बहुत सारे श्रोताओं हमारे ऐसे भी हैं जो दुकान में काम करते हैं या कहीं पर भी कोई काम करते हैं, तो उनके यहाँ रेडियो जो है वो सुबह से लेकर जब तक वो काम ख़त्म नहीं हो जाता लगा रहता है, चला रहता है, और उनका ये मानना है कि हम लोगों का दिल लगा रहता है जब ये गीत बजते रहते हैं। और कई बार जो है उनकी शॉप्स पे ऐसे लोग भी आते हैं, ऐसे ग्राहक भी आते हैं जो गीतों को इंजॉय करते हैं, और अगर गीत ना लगे हों तो वो कहते हैं कि थोड़ा वॉल्यूम अगर कम है तो उसे बढ़ा दीजिए। तो कहीं ना कहीं गीत संगीत हमारे साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहना भी चाहिए। तो चलिए फिर से चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर। कोयला फिल्म का ये गीत लीजिए, सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

श्रोता माफ़ कीजिएगा, अभी आपने जो गीत सुना आपने सुना राहत फ़तेह अली खां की आवाज़ में। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं श्रोता, और जैसा कि आप सभी को पता है इस कार्यक्रम का समय रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, और कुछ ही समय बाद यानी कि 7:45 पर लिए चलेंगे आपको शिमला की और प्रादेशिक समाचारों की ओर। तो समाचारों से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत सड़क फिल्म से, जिसे हम लेकर आए हैं अनुराधा पौडवाल और अभिजीत की आवाज़ों में।

0: हमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। दुनिया भर में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रदेश में भर में भी कई कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने योग को हर घर तक पहुंचाने की दिशा में प्रयास करने पर दिया बल। राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों में प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण पर खर्च करेगी 150 करोड़ रुपए की राशि। और देश विदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई नीट परीक्षा, 22 लाख से अधिक उम्मीदवार हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में 5000 से अधिक लोगों ने योग दिवस में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हिमाचल प्रदेश के लोगों में उत्साह देखा गया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित योग सत्र में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन योग परंपरा को आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। राज्यपाल ने योग को हर घर तक पहुँचाने की दिशा में प्रयास करने पर बल दिया, ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सके। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के 199 देशों में मनाया जाता है।
2: पूरा भारतवर्ष की जो परंपरा है उसको पूरा विश्व अपना रहा है। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 189 कंट्रीज में 2014 से ये प्रयास शुरू हुआ। स्वस्थ जो शरीर रहता है, स्वस्थ मन का परिचायक रहता है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने परिवार से लेके समाज से लेके हर घर में योगा का प्राथमिकता दें और हमारी जो परंपरा है वो भी जीवित रहे।
1: रिज मैदान पर आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं हमीरपुर के अनु में आयोजित राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करीब 2000 लोगों के साथ योगाभ्यास किया। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को विश्वव्यापी जन आंदोलन बनाया है। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि योग केवल एक व्यायाम पद्धति नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन शैली का आधार बन गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत की ये प्राचीन परंपरा पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा और स्वस्थ जीवन का आधार बन चुकी है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर से लाखों लोग योग और वेलनेस से जुड़ने के लिए भारत आ रहे हैं और ऋषिकेश, वाराणसी व मैसूर जैसे योग केंद्रों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, जिससे वेलनेस टूरिज्म सुदृढ़ हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के जोल सप्पर स्थित मेडिकल कॉलेज में करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। उन्होंने इसी परिसर में नवनिर्मित अस्पताल ब्लॉक, अकादमिक ब्लॉक सहित अन्य निर्माणाधीन भवनों के कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों की प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इस राशि से इन प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर डॉक्टरों, प्रोफेसरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी भर्ती कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमीरपुर के नादौन में करीब 125 करोड़ रुपए से अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम को इसी वर्ष प्रदेश के खिलाड़ियों को समर्पित किया जाएगा। वे हमीरपुर के अणु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में युवा खिलाड़ियों व अन्य बच्चों के साथ आज एक संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस इंडोर स्टेडियम में 14 तरह की खेल गतिविधियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए करोड़ों रुपए की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसमें सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए जीपीएस युक्त वाहनों के साथ पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था शामिल थी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की गई। ये अंग्रेजी सहित 12 भारतीय भाषाओं में संपन्न हुई। परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी संचालन के लिए 2,00,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया। राज्य सरकार ने ऊना जिले के टहलीवाल फायर पोस्ट को सब फायर स्टेशन में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही इस स्टेशन में 16 नए पदों के सृजन सहित 2 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था करने को भी स्वीकृति दी गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इस निर्णय से

0: सामुदायिक व व्यापारिक आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। स्थानीय विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों व पेयजल विकास सहित कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नाहन मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार चरमरा रही हैं। नाहन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार 4 वर्षों में इस मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण के रुके हुए कार्य को शुरू नहीं करवा पाई, जबकि प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों के भवन लगभग तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नाहन मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी से मरीजों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है।
1: चंबा में नए भवनों का निर्माण पूर्ण हो गया, हमीरपुर में नए भवनों का निर्माण पूर्ण हो गया, परंतु नाहन उस पुराने हमारे जो हॉस्पिटल है उसी के भरोसे अभी तक चल रहा है, जिसके कारण मरीजों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये विषय है और ये रहेगा, परंतु जो अत्यधिक चिंता का विषय है कि रोजमर्रा का हॉस्पिटल का काम वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा।
0: भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत को विश्व मंच पर सम्मानजनक स्थान दिलाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात का प्रमाण है कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि विश्व को दिशा देने वाला राष्ट्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति लगातार बढ़ रही है और देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 151 स्कूलों को CBSE से संबद्ध किया है, जिनमें शिमला जिले के 24 स्कूल शामिल हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार इन स्कूलों में खेल, कला, संस्कृति, संचार कौशल, सूचना प्रौद्योगिकी और जीवन कौशल पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस पहल से सरकारी विद्यालयों में ही आधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने योग को हर घर तक पहुंचाने की दिशा में प्रयास करने पर दिया बल। राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों में प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण पर खर्च करेगी 150 करोड़ रुपए की राशि। और देश विदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई नीट परीक्षा, 22 लाख से अधिक उम्मीदवार हुए शामिल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: इक्यानवे दशमलव 2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम का समय रहता है 6 से 8 बजे तक का और समाचारों के साथ साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय भी अब समाप्ति की ओर है। और श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने आपके साथ बहुत सारी बातें की हैं और बहुत सारी जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाई हैं और आपका मनोरंजन भी प्यारे प्यारे गीतों के साथ करवाया है। उम्मीद करती हूँ आपको गीत पसंद आए होंगे। तो चलते चलते अब सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम का आखिरी गीत हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से। आवाज़ है अरिजीत सिंह की और इस गीत के साथ अब अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए जाने की अनुमति। जय हिंद।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या।
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड। चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता का है? हमें पूरा भरोसा है, आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
6: ले जाएं, पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: यूएस में पति ने पत्नी को दिया तलाक।
11: oh, no.
15: पति ने दिए 400 करोड़ रुपए।
16: अच्छा, अमीर आदमी होगा ना।
15: अरे वो छोड़ो, ये सोचो कि कितना दुखी होगा जिसने अपनी पत्नी से पीछा छुड़वाने के लिए 400 करोड़ रुपए दे दिए।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या।
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा हो?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
6: ले जाएं, पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: यूएस में पति ने पत्नी को दिया तलाक।
11: oh, no.
15: पति ने दिए 400 करोड़ रुपए।
16: अच्छा, अमीर आदमी होगा ना।
15: अरे वो छोड़ो, ये सोचो कि कितना दुखी होगा जिसने अपनी पत्नी से पीछा छुड़वाने के लिए 400 करोड़ रुपए दे दिए।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो फिर रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है, अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं, ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, और अंत में समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रह जाता है। इसलिए उठो और अपने आज को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कल पछताना ना पड़े।
5: अरे मरी क्या।
6: सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं।
5: लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया।
6: फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है।
5: तिलक साहब जिंदा है?
6: तिलक?
5: हाँ।
6: अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है।
5: रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रूट नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने?
6: मुझे माफ कर दीजिए।
5: देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
5: वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: पता है आजकल सिर्फ फोन के चोरी के केसेस नहीं, फोन पर चोरी के केसेस भी आने लगे, और इन केसेस में चोर अकेले नहीं होते, उनकी मदद करते हैं आप। कैसे? आपको एक फोन आएगा।
8: हेलो, हाँ भाई साहब, यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, प्लीज रिसीव कर लो। हाँ,
7: या आपको एक फोन आएगा।
9: गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ, यूपीआई से पैसे रिफंड कर रहे हैं, प्लीज रिसीव कर लीजिए।
7: और यहाँ आप डालोगे पिन, और पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे।
9: क्यों? क्योंकि चोर एक बात जानते हैं जो आप नहीं जानते।
8: यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करते वक्त एंटर किया जाता है,
9: रिसीव करते वक्त नहीं।
8: तो याद रहे,
10: पेमेंट करते वक्त पिन एंटर करो, रिसीव करते वक्त कुछ मत करो।
11: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
12: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
11: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
12: आप चिंता ना करें।
11: चिंता का है कि? हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
12: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
13: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
11: तुम क्या खड़ा?
13: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
6: ले जाएं, पक्का?
13: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
14: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
15: यूएस में पति ने पत्नी को दिया तलाक।
11: oh, no.
15: पति ने दिए 400 करोड़ रुपए।
16: अच्छा, अमीर आदमी होगा ना।
15: अरे वो छोड़ो, ये सोचो कि कितना दुखी होगा जिसने अपनी पत्नी से पीछा छुड़वाने के लिए 400 करोड़ रुपए दे दिए।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूंगा।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और श्रोताओं, कार्यक्रम आप सभी इस वक्त सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।